0: but are instead owed his apology.
1: The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
2: Roju poddunna Pradhan Mantri gari statement chusanu. Ayana tittina enni doshincharo varini kuda pedda manasu tho kshaminchar ayana. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
1: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today. And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
3: A day after Member Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
4: Sanatan aur mandir ke sare paise ko lutere ko ho. उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है. मंदिर की रक्षा करना गलत है. मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है. देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
5: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant labourers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
6: मोर भाई दीपक रात्रे जो जम्मू कश्मीर हमला हुई से ओला रात 8 बजे के उठा करके पूछिन है कि तै कहां के रहने वाला है और तेर तोर धर्म का है तो हिंदू कही तमारीन है और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रे खत्म हो गए है।
7: हम भी जानते हैं ना, एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
8: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
9: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहां मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहां कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
10: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां सेमीकंडक्टर के साथ साथ एआई इंफ्रा और डेटा सेंटर पर भी काम हो रहा है। गूगल ने भी यहां $15 बिलियन के एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस की घोषणा की है। और भी कई ग्लोबल कंपनी यहां नई संभावनाएं देख रही हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा आंध्र प्रदेश के साथ साथ देश के यूथ को हो रहा है। चंद्रबाबू के नेतृत्व में हमारा आंध्र अब सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बनेगा। इससे आंध्र में फ्यूचरिस्टिक जॉब तैयार होगी, टेक इंडस्ट्रीज के लिए नया वातावरण तैयार होगा।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ये उस अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ।
1: 25-year-old Ruchika Singh from Noida is at the center of a controversy. A zero FIR has been filed after she allegedly abused Prime Minister Narendra Modi during a students' protest on July 23rd. The FIR accuses her of insulting the dignity of the PMO, spreading disharmony, disturbing public peace and defamation. The case, filed on the basis of a complaint by Smriti Singh, has now been transferred to Delhi Police for investigation.
2: प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उनके साथ एक और महिला नेत्री का भी नाम लिया गया है जो कि शोभा नहीं दे रहा है। एक महिला के लिए इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल क्षम्य नहीं है। ऐसे लोगों को पनिश करना जरूरी है ताकि आगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार वो सोचे।
1: CJP spokesperson Saurabh Das condemned the language but questioned the police action.
3: कि अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हेरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है।
1: The opposition has called it an attempt to silence protest voices.
4: लोगों पर जिन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया FIR करवा रहे हैं, उनको बुक किया जा रहा, हाउंड किया जा रहा, जो सर्वथा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और अग्रीमेंट के खिलाफ।
1: सम बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग MP कंगना रनौत हैव हिट आउट एट जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स ओवर देयर लैंग्वेज, बट पॉलिटिक्स हैज ऑफन अप्लाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। बीजेपी MP रमेश भिदुरी हैज मेड कम्युनल रिमार्क्स इनसाइड पार्लियामेंट अर्लियर। But the matter went to the Privileges Committee and no criminal case followed because parliamentary privilege protects speeches inside the house. Then there is Raja Singh, a former BJP leader repeatedly embroiled in controversy over provocative speeches. Yet he continues to remain an active political figure. So where is the line? Can abusive speech alone lead to arrest? The Constitution guarantees free speech, but Article 19 also permits reasonable restrictions on grounds like public order, defamation and decency. Freedom exists, but it is not absolute, and Indian politics reflects that contradiction. Mamata Banerjee, Uddhav Thackeray, and now Tamil Nadu Chief Minister Vijay have all accused rivals of suppressing free speech. Yet governments led by each have also acted against critics over allegedly defamatory or abusive posts. Across parties, support for free speech often depends on who is speaking and who is in power. In many of the world's strongest democracies, freedom of expression enjoys far stronger protection. Even offensive speech is often protected unless it incites violence or breaks specific laws. Ruchika's case is no longer just about one abusive remark. It has revived a much larger question. Should offensive speech invite arrest or only speech that crosses the line into crime? That debate is once again at the heart of India's democracy. Bureau Report, India Today.

एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

0: एफसीआरए का बिल जो है पिछले बजट सत्र के समय इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद कुछ सुझाव आए थे सदस्यों से, तो उसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे जब बीएससी में इसकी चर्चा होगी।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिल है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जजेस का संख्या बढ़ाया गया है, उसका भी हम बिल पारित करना है।
2: और सर एफसीआरए अमेंडमेंट को
1: कई इम्पोर्टेंट बिल्स है,
2: तो उम्मीद कर सकते हैं कि
1: बिल्स के बारे में मैं आपको समय समय में सूची दे दूंगा या सूचना दे दूंगा।

0: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: You are watching India Today.
3: A very good morning to all our viewers. You're watching India Today. I'm Anjali Pandey. Lots lined up for you in this bulletin. But first, let's take a look at the headlines this hour. Medal rush in Commonwealth Games as Indian boxers win 7 gold medals out of a possible 10, with the remaining 3 boxers settling for silver. Prime Minister Modi strengthens outreach to youth, says youth is the driving force behind country's growth and India's digital transformation, stresses right guidance essential to realise their full potential. Opposition accuses Prime Minister of playing the victim card. Migrant workers shot dead by Pakistan-backed Lashkar proxy in Jammu and Kashmir's Kulgam district. Family of one slain worker, Deepak Rathre, reveals he was asked his religion before being killed. Is this a chilling repeat of the Pehelgam terror attack?
4: Ula raat 8 baje ke utha karke puchi nahi ki tain kahan ke rehne wala hai aur tere tod dharm ka aaye to Hindu kahi tamari nahi aur is part day mor bhai Deepak Rathre khatam ho gaye.
3: Opposition MP's satirical skit outside Parliament triggers a major row. VHP Bajrang Dal protests condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for skit. Varanasi police register FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avadhesh Prasad. Complaint also filed at Parliament Street police station in the national capital. Monsoon fury continues to batter Kerala as heavy rains trigger flash floods, landslides and severe waterlogging across several districts. 6 people dead and 6 more missing. IMD issues orange alert for 12 districts. Chief Minister V.D. Satishan reviews situation. After rain slash Karnataka, water levels at key reservoirs rises. Karnataka releases 12,000 cubic of water to Tamil Nadu, fearing flooding. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar calls for an all-party meet. Donald Trump says he has put a round of planned weekend strikes against Iran on hold while indicating that a rough framework of a deal has been reached, says U.S. locked and loaded against Iran if it disagrees to deal. And we're getting some breaking news. TVK slams Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar. TVK says that D.K. Shivakumar acting at the behest of DMK. TVK claims that D.K. Shivakumar is ignoring Congress High Command. D.K. Shivakumar only listens to the DMK leadership. TVK has also alleged that DKS, DMK are in a cordial relationship. They have a cordial relationship and TVK has targeted Chief Minister D.K. Shivakumar over alleged pro-DMK stand. So TVK is now questioning D.K. Shivakumar's loyalty to the Congress leadership. In fact, Nirmal Kumar from the TVK has said that D.K. Shivakumar is helping the DMK. So TVK is now targeting Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar. This is over the Kaveri issue, saying that he is following what DMK is saying. Listen.
5: அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் டி கே சிவகுமாரிடம் இருக்கிறது. அதற்கு பெரிய உதவியாக அவரும் இருக்கிறார். இவர்களும் அதுக்கு தேவையானபடி நடந்து கொள்கிறார். இல்ல, அவர் காங்கிரஸ் சொல்ற தலைமை சொல்றதே கேட்கிற நிலைமையில் இல்லை. அவர் திமுக தலைமை சொல்றதான் கேட்கிற நிலைமை இருக்கார். இவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளவு ஒரு உட்புறம், அவ்வளவு ஒரு நல்ல உறவு இருக்கிறது. அவர் அங்க காங்கிரஸ் தலைமை சொன்னாலும் கேட்கிற நிலைமையில டி கே சிவகுமாரில் ஸ்டாலின் சொன்னா கேட்பார், இந்த குடும்பம் சொன்னா கேட்பார். இவர் ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளவு ஒரு நல்ல உறவு இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லி அவங்க தான் வெளியிடணும்.
3: And my colleague Pramod Madhav is now joining us with more details on this. Pramod, that's a big statement which is being made by the Tamil Nadu minister, saying that DK Shivakumar, firstly, is acting on the behest of the DMK. Secondly, he's not even listening to the Congress High Command.
6: Yes, Anjali, it is quite shocker that has happened today morning, because this is Nirmal Kumar at the airport of Chennai Airport. He said these words. In fact, he tried to claim that just like how DMK was acting against the state's interest during the period of Jayalalitha, now DMK is acting against the interest of Tamil Nadu just to demean the Chief Minister Vijay. And that is why all kind of hurdles are being made, brought in to make sure that the Kaveri water is not being released. And this is where he actually made this particular statement, claiming that there seems to be a kind of connection between the Karnataka Chief Minister DK Shivakumar and the DMK family over here. That is Stalin and his family. And he also said that, like, whatever the DK Shivakumar, the Chief Minister of Karnataka, is not listening to the Congress High Command, but to the leadership and the family, the first family of DMK. That's how he's trying to put forward, claiming that there is a connection between DK Shivakumar and Stalin's family, which is actually being used over here to not release Karnataka Kaveri water and defame Chief Minister Vijay. These are the words of the state law minister, Nirmal Kumar, Anjali.
3: All right, Pramod, thank you for those details and for that context. So the TVK is now openly slamming DK Shivakumar, saying that he's acting at the behest of the DMK, and that Karnataka Chief Minister is not even listening to what the Congress High Command is saying. So that's a very crucial statement coming from the TVK amid the ongoing Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. So amidst the raging Kaveri water dispute, there is some respite for Tamil Nadu. In welcome news for Tamil Nadu, Karnataka's Kabini Dam has released 12,000 cubic of water. The move is bound to ease some of the water crisis in Tamil Nadu. And in the latest development, Karnataka Chief Minister DK Shivakumar will convene an all-party meeting today to discuss this issue, asserting that the state cannot withhold water and that a full Kaveri reservoir is a matter of relief. However, the political battle has now shifted to the Supreme Court, with the DMK moving towards legal action seeking immediate release of Kaveri water to Tamil Nadu. Meanwhile, DMK Chief MK Stalin has targeted Chief Minister Vijay over his approach, saying that talks with Karnataka were bound to fail. In fact, let's take a look at Prime Minister Modi's youth interaction.
7: Maria Pandey, दिल्ली से एक माय भारत वॉलंटियर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
8: आइए अपनी गगनभेदी तालियां, अदम्य उत्साह और राष्ट्रभक्ति के स्वरों के साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं अनुराग सिंह, एक अत्यंत गर्व माय भारत वॉलंटियर पश्चिम बंगाल से, आज अपने आप को सौभाग्यशाली बोध कर रहा हूँ कि मैं भारत के यशस्वी और स्वराज शिल्पी प्रधानमंत्री जी के सामने आज जेन जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे साथ भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के हजारों स्थानों से 1 करोड़ से अधिक युवा हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ हमारे बीच कई राज्यों के महामहिम राज्यपाल, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारा मार्गदर्शन एवं इस जन आंदोलन को एक नई रूप दिखाने के लिए और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों के पूज्य संत महात्मा, सम्माननीय महंत, पूज्य आचार्यगण, पूज्य स्वामीगण, पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्मगुरु भी उपस्थित हैं। साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने हुए हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में माय भारत परिवार से आज लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। ये युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और नशा मुक्त भारत का निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पराक्रम की है, उसी संकल्प और उसी जागृत युवा शक्ति की, जो नशे के अंधकार को परास्त कर भारत को एक नई दिशा दे सके। इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आएं और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें।
9: माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है, अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,26,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से एक साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचार के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है। 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है, और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा। ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा, और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और
3: So, Prime Minister Narendra Modi is currently launching the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing. Now, this initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become the ambassadors of positive social change in their communities. Now, the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Under this campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports, events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak, discussion forums, art competitions and community engagement programs as well. The initiative seeks to further strengthen community participation by bringing together educational institutions, youth organizations, civil society groups, industry bodies, and also spiritual organizations on a common platform to create a collective movement against substance abuse. The program will witness participation from youth across the country from over 10,000 locations and My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges.
10: उतना ही वो छोटी-छोटी गलतियों से बचे, जिनका पूरा जीवन तबाह कर देते हैं। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे, उतना ही वो छोटी-छोटी गलतियों से बचे।
11: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलोंग तक युवाओं में जगाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे, इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7,000 से अधिक ब्लॉक वाइज माई भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माई भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार।
12: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
7: ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बनें।

0: पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत, और आखिर में मालिक।
1: ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है।
2: ए राहुल,
3: ए राहुल,
2: सुनना, रुकने यार, कहाँ आज फिर से लाइब्रेरी?
4: हाँ भाई, एग्जाम सर पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना।
3: ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम सब इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुन, सुनना, आज रात पार्टी है, चलेगा? चलना।
4: अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता।
2: अब थोड़ी देर यार, थोड़ी देर, बढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी।
3: एग्जैक्टली,
2: तो एंजॉय कर ले।
3: हाँ।
4: और सपने
2: देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अबे उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार।
4: अरे मैं नहीं जाऊंगा यार।
5: बस एक बार।
0: देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूँ।
4: लेकिन तुम हो कौन?
0: नशा,
5: नशा, नशा,
0: जिसे दुनिया कूल कहती है।
5: कूल, कूल,
0: जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं।
5: स्टेटस, स्टेटस,
0: जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं।
5: आजादी, आजादी,
0: और बाद में मैं बन जाता हूँ लत,
5: लत, लत।
0: और सुन, मैं तो बीड़ी, सिगरेट, शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। देख, तुझे पार्टी तक ले आया मैं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी,
5: पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी।
3: ए राहुल, ये वेब पकड़, रील बनाएंगे।
2: सामने सामने सामने शूट कर।
3: भाई, पूरा स्वैग आना चाहिए।
2: स्वैग आएगा, 1000 likes आएंगे यार।
3: जोर शॉट, जोर शॉट,
2: 1 million।
4: अरे भाई, मुझे नहीं करना है।
2: अबे डरता है ये,
3: इतना सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर।
2: हाँ।
3: अरे सुन्ना भाई, बस एक कश ले, बाकी हम सब संभाल लेंगे। संभाल लेंगे ना।
4: हाँ। हाँ। भाई नहीं कर रहा मुझे।
3: अरे तू दोस्त है ना मेरा।
4: हाँ।
3: तुझे दोस्ती की कसम।
5: हाँ।
3: दोस्ती की कसम। ले ले, ट्राई कर, ट्राई कर,
2: कर कर
3: कर कर कर कर।
2: वाह, क्या प्रेम है ब्रो,
1: एक कश। याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता, हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला, या यूं कहिए कि उसे बर्बाद करने वाला होता।
0: क्यों, कैसा लग रहा है?
4: अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है।
0: वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूँ। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता।
0: अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा।
4: मतलब?
0: अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा।

0: पैसा पैसा पैसा कहाँ है? अलमारी अलमारी की चाबी, पैसा, माँ माँ माँ अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। माँ माँ कहाँ हो तुम? माँ कहाँ हो तुम?
1: बेटा आ गया तू, चल खाना खा ले।
0: माँ मैं खाना बाद में खा लूंगा, मुझे अभी ये अलमारी की चाबी दे दो, मुझे पैसा चाहिए।
1: पहले खाना खा ले फिर बात करेंगे।
0: मैं खाना बाद में खा लूंगा माँ, मुझे मुझे पैसा चाहिए माँ, मुझे बस अलमारी की चाबी दे दो अभी।
1: पैसे कहाँ से दूँ तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है।
0: मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त।
1: जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस।
0: फीस? कोई फीस फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, इसी वक्त।
1: भैया पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताबें बोझ हो गई तुम्हारे लिए।
2: जरा सोच क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले ले इसे बेच दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए।
1: बेटा बेटा याद है तुझे, जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था माँ फूंक मार दे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं, तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है।
3: देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था, जो भी किया इसने खुद किया।
4: यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना।
5: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
6: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: Time. It's mere lip service that is paid instead of concrete action. This city, this country, is no country for women.
9: At the end of Ram Leela Maidan, none other but Anna Hazare as the next poster boy. These visuals right there symbolize what this movement is all about.
10: Rounds of tear gas, you can hear it right now. You can see the sense of panic. The government saying we understand the problem. We are trying to clean it up.
8: Preeti Chaudhary, India Today.
11: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
12: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
13: They created this Frankenstein called Bhindranwala.

0: हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Welcome back. We're getting some breaking news. All-party meeting on Kaveri Rao begins at Chief Minister's official residence. The all-party meeting on the Kaveri issue has now started at Krishna, the Chief Minister's official residence in Karnataka. The meeting is being chaired by Chief Minister D.K. Shivakumar. Six former Chief Ministers, including Virappa Moili, Siddaramaiah, B.S. Yedurappa, H.D. Kumaraswamy, D.V. Sadananda Gowda and Basavaraj Bommai are participating in the meeting. Remember, this comes after Karnataka has already released 12,000 cubics of water to Tamil Nadu amid the heavy rainfall, due to which the reservoirs are now full. And in order to prevent flooding, water has already been released from Karnataka to Tamil Nadu. And Prime Minister Modi is speaking at the Gen Z event. Let's listen in.
1: और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं. इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं. आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है. साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है. क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो. यही इस अभियान का उद्देश्य है. इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे. और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है. साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था. इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है. इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है. यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन, करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओज ने इस दिशा में संकल्प लिया है, सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तैयार किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है, लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है, सामूहिकता की ताकत होती है। और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। साथियों, आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं। माय भारत के वॉलंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े हैं। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को

हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी है। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जित्तू पीतई मती दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराया न पिछाणे, खस बहू धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके। आपको भनक आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, पता चलेगा उसमें बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है, ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ मामला गड़बड़ है। साथियों, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं, आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें, नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते, जो नशे को परास करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत

0: उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं, मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है, आपके युवा साथी डिवोटीज हैं, आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है, पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे, दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे जगह और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिलकर के करें, आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं भाई भारत के वॉलेंटियर्स की बधाई करता हूं, वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माई भारत के वॉलेंटियर्स को मिलने का मौका मिला, वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक एक सप्ताह रुक करके आए हैं, जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता है जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं, वहां जाकर के आए। उनके अनुभव बड़े प्रेरक थे और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलेंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक समर्पित भावना का प्रतीक है। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: was the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. That was at which Prime Minister Modi was speaking. He launched this Nasha Mukti Abhiyan for the youth, and he has said that how the youth is vigilant today and that their energy, talent are needed for this country, and for that they need to keep themselves drug free. With that, we're now slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.
2: Watching. इंडिया टुडे।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: एफसीआरए का बिल जो है पिछले बजट सत्र के समय इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद कुछ सुझाव आए थे सदस्यों से, तो उसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे जब बीएससी में इसकी चर्चा होगी।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिल है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जजेस का संख्या बढ़ाया गया है, उसका भी हम बिल पारित करना है।
2: और सर एफसीआरए अमेंडमेंट को
1: कई इम्पोर्टेंट बिल्स है,
2: तो उम्मीद कर सकते हैं कि
1: बिल्स के बारे में मैं आपको समय समय में सूची दे दूंगा या सूचना दे दूंगा।

0: And we're getting some breaking news from Jharkhand. The Jharkhand Public Service Commission, or the JPSC recruitment row, has snowballed into a major political and social flashpoint. As students continue their agitation in Ranchi for the ninth straight day, Congress MLA and former Finance Minister Rameshwar Oraon has acknowledged that the allegations are serious and has sought a fair and impartial probe from Chief Minister Hemant Soren. The BJP has gone further, alleging that the JPSC posts are being sold and demanding the Chief Minister's resignation. The ruling JMM, however, says that the government is acting against those responsible and that no guilty person will be spared. So that is the latest as far as the JPSC recruitment row is concerned. Let's take a look at the reactions on this.
1: सरकार की छवि एक ही से इसी घटना से धूमिल हो जाएगी ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक घटना है और सीआईडी, हाँ सीआईडी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच बैठाया सीआईडी का, सीआईडी काम कर रही है, सीआईडी काम कर रही है।
2: जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, ये जो घोटाला हुआ, घोटाला इसको क्या रूप दे सकते, जो नौकरी बेचने का जो खेल चला, जो नौकरी बिक रहा है पैसा से, 70 लाख में सीओ बन जाओ, 80 लाख में डीएसपी बन जाओ, 60 लाख में बीडीओ बन जाओ, ये जो नौकरी बेचवा रहे हैं हेमंत सोरेन जी, उनको जरूर जवाब देना चाहिए। आज पूरे राज्य के जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्करेज करने का काम ये सरकार कर रहा है, उनका मनोबल तोड़ने का काम किया।
3: छात्र लगातार लंबे समय से बारिश में, धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन राहुल बाबा और प्रियंका दीदी की नजरें इधर नहीं जा रही। इसे कहते हैं कन्वीनियंस और दोगलापन की राजनीति। साहब नेट के मुद्दे पे ये मुखर थे, लेकिन इनके राज में जब पेपर लीक हुआ तो ये मौन साध लिया। साहब
4: जितने बड़े घोटाले हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अनेकों मामले चल रहे हैं और वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारी सरकार आई, हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो जो भी मामले हुए उन पर त्वरित कार्रवाई हुई, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो या जेएसएससी का मामला हो, कहीं भी कोई संज्ञान में आया सरकार के तो तुरंत कार्रवाई हुई है और उस पर लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, जेल भेजे गए हैं। आज एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है हम इस इंडिया गठबंधन की सरकार ने, जितने बैकलॉग की परीक्षाएं थी सभी को आज एक पटरी पर लाने का काम किया, एक साथ चार चार बीपीएससी की परीक्षाएं ली गई।
0: And one protesting student is someone whose 80-year-old father is still working as a daily wage laborer to support his education. The student says that if deserving candidates continue to be denied jobs, it will destroy the faith of rural families in education itself.
5: हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बार बार हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर, और गरीब आदमी हैं, अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग की सरकार कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म, सामाजिक एक अच्छा जिंदगी मिलेगा तब ना सर हम लोग पढ़ पाएंगे।
0: And my colleague Satyajit Kumar is now joining us on this story. Satyajit, tell us about the demands which are being raised by the protesters and what steps have been taken by the JMM government so far. Satyajit, if you could hear us. All right, we'll try to re-establish that connection, but that is the latest that's coming in from Jharkhand, where this is about the JPSC recruitment row. The protests have already entered the ninth straight day, and you just heard the reactions also from the ground of how the morale of the aspirants is also now down after this entire controversy. In fact, the politics is also intensifying with Congress MLA and former Finance Minister Rameshwar Oraon, who has acknowledged that the allegations are serious and has also sought a fair and impartial probe from the Chief Minister. And the BJP, meanwhile, is alleging that the posts are being sold and demanding the Chief Minister's resignation. And now shifting focus to the state of Kerala, where an orange alert for 12 Kerala districts have been issued. Heavy rain, thunderstorms likely across the state. Landslides, flooding continue to hit several areas. As per the government, people in risk zones must move to safer places. Alert for landslides, flash floods and mudslides. People living near rivers, dams have been asked to stay vigilant and to avoid hilly areas and waterfalls and also reservoirs. Public has been advised to avoid non-essential travel. In fact, the officials have said that don't enter rivers or flooded water bodies and no selfies near the swollen rivers or the bridges. So strong winds, torrential rain may batter the state of Kerala. 8 people have already died in the Kerala monsoon mayhem. Let's take a look at this ground report by my colleague Shivamol Kitch.
6: Well, Kerala has been dealing with heavy rainfall since the last few days, but today there's a major relief as it stopped raining and the places that faced severe water logging is now free of the water logging. We are in Rani Pathanamthitta, one of the worst affected regions, and currently what you're seeing are the people, the shopkeepers, cleaning their shops because this entire region, this road, these shops were all filled with water yesterday. But today, since morning, it's not rained. So the water has completely been cleared. Only inside the shops, there's water. They've suffered a lot of damage, as you can see. A lot of items were damaged in the water. They're now removing the water that's there inside these shops. You know, not just the shopkeepers, but also the houses nearby are all engaged in cleaning procedure at this point right now. It was one overnight rainfall that caused this much damage, and there's also criticism that proper alert was also not issued. It was only an orange alert initially issued, and post the heavy rainfall a red alert was issued. There was no direction to shift to different places or camps or anything. So those are also the concerns and criticism that's being raised by the people here. We are in Rani Pathanamthitta, again one of the worst affected regions across the state, because the entire town was facing severe water logging in one day's heavy rainfall. This is the LPG school in Rani. Now there are around 10 families staying here. They were staying very close to a building here, very close to the school in fact, and they were staying in an apartment building right opposite to this, right close to this. And we're learning that when it started raining heavily, when the water level started increasing, they had to run after their houses and shift to these camps. There are 10 families and around 22 people staying here, including men, female, male, female, and also children. They're saying that they ran in those same clothes that they were wearing. They couldn't take any of their belongings or anything. And it was later the district authorities that came over and gave them clothes to change, and also some of the essential necessities, to stay here till the situation gets better. Now the situation is clear there, but they'll have to clean and, make the house in a livable condition and then shift back to their homes. Well, we are in Aranmula in Pathanamthitta, where severe waterlogging is still affecting many regions here. There's a major relief from rainfall, but the water logging continues in some regions, and this is the one region where there is severe water logging. And you can see around me there are many houses. All of these are empty, and as people have moved to various camps, it might look like I'm moving in a water body, but no, that's not the case. In fact, it's a road. It's one of the main roads here, and since it's filled with water, people are now using boats to commute from one location to another. Now around 8 deaths have been recorded across the state, and also around 200 houses have suffered damages. In some regions, like in Rani, in Pathanamthitta, the water has completely moved out, and now they've engaged in cleaning procedure. But here, the situation is that water logging continues, and we're learning that this will take some time to, get cleared. It needs to stop raining also is what we are learning at this point. And also, the water flowing from Rani is going to, come to this place, and that's also one of the reasons it's going to continue facing waterlogging for some more days is what we are learning at this point. But as of now, people have all been cleared from this region, have been moved to safer locations, and they're waiting for this water to be cleared life to get back to normalcy. With video journalist Tinku Rajshekar, Shubhimol KG for India Today from Pathanamthitta.
0: Monsoon fury continues to disrupt normal life across several states. From flooded streets and rising rivers to submerged homes and damaged crops, heavy rainfall has triggered widespread destruction, exposing the scale of the weather crisis on the ground. 7 inches of relentless rain has turned a bustling market area into a waterlogged zone. Floodwaters entered shops, homes and public offices, damaging property and leaving residents struggling amid severe waterlogging. Rain damage has hit farmers hard as thousands of quintals of paddy were left rotting in the open. Visuals of spoiled grain and sprouting sacks have sparked questions over administrative negligence. In Gujarat, Sabarkantha, torrential rains caused the Debol River to swell rapidly, flooding low-lying areas. A car caught in the strong current was swept away as water levels surged. In Maharashtra's Amravati, intense monsoon showers triggered widespread disruption with excessive rainfall recorded across several areas. 2 deaths have been reported as authorities assess the damage. In Odisha's Kanas block, rising water levels in the Daya River have triggered a flood alert. Authorities remain watchful as continuous rainfall keeps the danger of flooding high. And now, shifting focus. Opposition MP's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram temple donation theft, dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities, condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. A BJP delegation led by MP Basuri Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharm. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharm and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Reacting to the FIR and other complaints against him, Pappu Yadav has said that he does not care about the BJP's criticism and questioned whether highlighting donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharm and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. Pappu Yadav is also in damage control mode and has released a shivering worship video amid backlash over his skit. Claiming he respects Sanatan Dharm, the MP has said his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints.
7: बधाई उनको मंत्री हो गया अच्छा काम करे नौटंकी वाज थे तो फिर मेरे साथ भी कभी थे उनसे पूछ
8: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे
7: गलत किए मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है मंदिर की रक्षा करना गलत है मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है हनुमान जी को नचाना सही है गुड्डी में राम को उड़ाना सही है
9: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके
10: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही है। इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो, आलोचना करी तो साधुओं का मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है। साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए। आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो। तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
11: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि FIR दर्ज हुई है। और पप्पू यादव तो मुखोटा है, अगर तुम चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते। सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
12: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
13: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
0: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्देश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
14: In fact, a complaint has been submitted to the Deputy Commissioner of Police at the Parliament Street Police Station seeking registration of an FIR against Rahul Gandhi and independent MP Pappu Yadav. The complainant alleged that their street play protest outside the Parliament on July 31st over alleged Ram Temple donation irregularities hurt the religious sentiments of the Hindu community.
15: आप पब्लिसिटी के लिए कोई भी सांसद तमाशा सनातन धर्म का नहीं बना सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए एक आस्था का विषय है और आप यूं तमाशा बना रहे हैं धर्म का। आप राम जी के तस्वीर को किसी के चरणों पे, आप किसी के पैर पे रख रहे हैं, तो ये हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। और इसके लिए आज जंतर मंतर पे हम सभी साधु संत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इससे पहले भी देखा गया कि आपकी, आपका एटीट्यूड सिंपल है, यू आर अ हार्ड कोर क्रिमिनल। एक हार्ड कोर क्रिमिनल जिनपे 41 रजिस्टर्ड केसेस है, अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा, हलफनामे में आप देखिए 41 रजिस्टर्ड केसेस है, इनको हलफनामा भरने में मुझे लगता है 4-5 घंटे लगते होंगे, तो उसका आप पैसा वसूल करने के लिए इस प्रकार के सस्ते स्टेटमेंट देने आप पार्लियामेंट के बाहर आप करेंगे और पूरे विश्व भर में सनातनियों का अपमान करेंगे, तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज लिखित में हम शिकायत भी कर रहे हैं, DCP जो संसद मार्ग है वहां पर हमने लिखित में शिकायत दर्ज कराया है।
14: And now shifting focus, amidst the raging Kaveri water dispute, there is some respite for Tamil Nadu. In welcome news for Tamil Nadu, Karnataka's Kabini Dam has released 12,000 cubic feet of water.
0: The move is bound to ease some of the water crisis in Tamil Nadu. Meanwhile, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar is holding an all-party meeting today to discuss the Kaveri issue. However, the Kaveri water battle has now shifted to the Supreme Court, with the DMK moving towards legal action seeking immediate release of Kaveri water to Tamil Nadu. DMK Chief M.K. Stalin has targeted Chief Minister Vijay over his approach, saying that talks with Karnataka were bound to fail and that the Kaveri issue requires collective consultation. However, Tamil Nadu Minister Nirmal Kumar said that the Supreme Court is now the only way forward, while accusing Karnataka of politicizing the Kaveri issue for decades. He also maintained that Tamil Nadu is seeking only the release of its rightful share of water.
16: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಗೂಡ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೈತ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥವನು. ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಾಗೂ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಕೂಡ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ 7.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ರವರ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬರದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಾವು ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
17: We have requested all the farmers that until unless we don't give some kind of guidelines, you need to wait patiently.
16: Management authority ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡ ಏನು 3,500 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಬಹಳ ಸಂಕಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು.
17: 9,000
16: ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಡ್ಯಾಮು ಕೂಡ ತುಂಬಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ
17: ಇವತ್ತು
16: ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ.
17: All the dams were empty and there was not much enough of rain in the Kaveri Delta region.
16: ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಬರಿಯಲ್ಲಿ 24,000 TMC ನೀರು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕ್ಯೂಸಿಕ್ 24,000 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. KRS ಅಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ 11,884 ಕ್ಯೂಸಿಕ್, ಹರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು 67,378 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಒಳಹರಿವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನಮಗೆ
0: ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ ಬೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
18: You are watching India Today. With Instagram.

0: FCRA का बिल जो है पिछले बजट सत्र के समय इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद कुछ सुझाव आए थे सदस्यों से, तो उसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे जब BSE में इसकी चर्चा होगी।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिल है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जजेस का संख्या बढ़ाया गया है, उसका भी हम बिल पारित करना है।
2: और सर FCRA अमेंडमेंट को
1: कई कई इम्पोर्टेंट बिल्स है,
2: तो उम्मीद कर सकते हैं कि
1: बिल्स के बारे में मैं आपको समय समय में सूची दे दूंगा या सूचना दे दूंगा।
3: मुझे अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि जीतने और मैंने जीता था, और काफी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे है। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कम बैक ठीक हो रहा है, अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी है। अगर 100% फिट हो तो फिर वो फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा रहती है, मतलब ये लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर मतलब आप इंजरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच सोच के कदम रखना पड़ता है। तो आज वही था कि थोड़ा मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूं, और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूं क्योंकि कंडीशन के हिसाब से, तो वही थोड़ा मिक्स फीलिंग थी, और फिर भी थोड़ा ठीक था।

0: हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: FCRA का बिल जो है पिछले बजट सत्र के समय इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद कुछ सुझाव आए थे सदस्यों से, तो उसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे जब BSE में इसकी चर्चा होगी।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिल है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जजेस का संख्या बढ़ाया गया है, उसका भी हम बिल पारित करना है।
2: और सर FCRA अमेंडमेंट को
1: कई कई इम्पोर्टेंट बिल्स है,
2: तो उम्मीद कर सकते हैं कि
1: बिल्स के बारे में मैं आपको समय समय में सूची दे दूंगा या सूचना दे दूंगा।
3: मुझे अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि जीतने और मैंने जीता था, और काफी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने अपना सीजन बेस्ट किया है और कम बैक ठीक हो रहा है, अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी है। अगर 100% फिट हो तो फिर वो फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा रहती है, मतलब ये लगता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं, और अगर मतलब आप इंजरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा।
4: लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, एक ह्यूमन बॉडी में डेंगू वायरस होगा जो मच्छर के थ्रू स्प्रेड होगा।
5: मच्छर वेक्टर है, उसका
4: सूत्रधार है,
5: उसको लेके चलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है।
4: डेंगू के बारे में सबसे बहुत पॉपुलर एक तो मिथ है कि पपीते के पत्ते दीजिए तो डेंगू ठीक हो जाता है, क्या ये सही है?
5: कोई बोले कि मुझे प्रूफ लेके आओ कि पैराशूट से जान बचती है।
4: क्या ये सच है कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और कुछ लोगों को मच्छर कम काटते हैं? आजकल हमारी सोसाइटीज में फ्यूमिगेशन होता है,
5: तो पॉलिटिशियंस लव इट एंड म्युनिसिपल अथॉरिटीज आल्सो लव इट। एडल्ट मॉस्किटो हैं जो वहाँ घूम रहे हैं मच्छर, उनको तो मार देगा, लेकिन जो उनके एग्स और लार्वा पे इसका कोई असर नहीं होता है। दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी मंथ्स टुगेदर इन इवन ड्राई एनवायरमेंट। डेंगू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो आदमी सोचता है कि वो सब कुछ इसके बारे में जानता है, या फिर वो सोचता है कि इससे तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो हर साल होती है बीमारी,
4: और दोनों ही केसेस में फंस जाता है।
5: पहले डेंगू था वो सिर्फ शहरों की समस्या मानी जाती है, कहते हैं कि शहरों में डेंगू होता है, लेकिन अब गांव देहातों में भी डेंगू होता है।
4: डेंगू इज नो लॉन्गर अ मॉनसून डिजीज। इनफैक्ट इंडिया में नियरली 7,000 केसेस वर रिकॉर्डेड इन जस्ट द फर्स्ट 2 months। डेंगू जानलेवा कब हो जाता है?
5: प्लेटलेट के बारे में काफी सारे मिथ है, लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट गिर रहे हैं हमारा प्लेटलेट 1,00,000 रह गया, अब तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है, घबरा जाते हैं।
4: डेंगू से बहुत फेमस पर्सनालिटीज की डेथ हुई, यश चोपड़ा डाइड आउट ऑफ डेंगू, राइट? सो इट कैन बी एंड समबडी हु इज एज इनफॉर्म्ड एज हिम डाइड आउट ऑफ डेंगू।
5: ये ऐसी बीमारियां हैं जो गरीब से लेके अमीर तक को अफेक्ट कर सकती है। आपके पास कोई भी बेस्ट फैसिलिटी हो, बेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज हो, अगर किसी सिनेरियो ऐसा आ सकता है कि अगर आपको डेंगू की सीवियर इलनेस हो गई तो बचने की संभावना ट्रीटमेंट से ज्यादा बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है।
4: डेंगू, इट इज नो लॉन्गर अ न्यू डिजीज। मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट इट, हमारे परिवार में किसी ना किसी को कभी ना कभी तो ये हो चुका है। फीवर होता है, प्लेटलेट काउंट डिप करता है, और लोगों को लगता है पपीते के पत्ते के जूस से तो पक्का ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब बदल रही हैं और जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेंगू इज नो लॉन्गर अ मॉनसून डिजीज। केसेस जनरली जो पहले लोगों को लगता था कि रेन्स के साथ आएंगे और विंटर के साथ डिसअपियर कर जाएंगे, ऐसा अब नहीं हो रहा है। दैट पैटर्न इज ब्रोकन। ये अब साल भर रिकॉर्ड होता है। इनफैक्ट इंडिया में नियरली 7,000 केसेस वर रिकॉर्डेड इन जस्ट द फर्स्ट 2 months, दैट्स जनवरी एंड फरवरी। सो नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भी बढ़ रहे हैं। कोल्ड हिल स्टेशंस में कभी डेंगू की बीमारी के बारे में नहीं सुना गया था, जहां अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आपको इस चेंजिंग डिजीज के बारे में क्या जानना चाहिए? और ये सारी जानकारियों के लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है। इट इज नॉट जस्ट एन अवेयरनेस पॉडकास्ट, इट इज साइंस बैक्ड। हम इसमें मिथ्स बस्ट करेंगे, रिस्क किस तरह के होते हैं, किन लोगों को होते हैं, वैक्सीन लगाने की चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्या फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाने चाहिए, डॉक्टर की क्या एडवाइस है, इन पूरी डिजीज स्पेक्ट्रम के बारे में वो हम आपको बताएंगे। एंड आई कुडंट थिंक of a better expert, because I have with me somebody who has worked on polio elimination. He has helped draft India's national vaccine policy. He has co-authored one of the most detailed accounts of India's COVID response. Unka aap chehra dekhenge to aapko yaad aa jayega. He is also part of the World Health Organization work in India for years. And in fact, last year, he was recognized globally with the Wiley Research Heroes Prize as well. Inhone bahut kaam kara hai vector-borne diseases ke bare mein. Please join me in welcoming Dr. Chandrakant Laheria. Hello.
5: Thank you very much. Thank you, Sonal ji.
4: Hum ye podcast shuru kare, isse pehle main sabko bata dun that this is part of an All Out and India Today larger initiative, jise hum keh rahe hain Saath Ladenge Dengue se, jiske pure dauran hum aapke paas bahut sari aise khabrein lekar aa rahe hain jo aapko dengue ke bare mein well informed rakhengi. मेरा सबसे पहला सवाल डेंगू पर ये है कि मेरे हिसाब से डेंगू की जो पूरी परिभाषा है और डेंगू के बारे में जो भी हम जानते हैं वो क्या रैपिडली बदल रहा है. एक समय था कि लोगों को लगता था और हम सबकी ये अंडरस्टैंडिंग थी, डॉक्टर्स इंक्लूडेड, दैट मॉनसून आएगा, डेंगू के केसेस बढ़ेंगे और विंटर्स जैसे ही सेटल होंगे डेंगू खत्म हो जाएगा. लेकिन इस बार हमने देखा कि समर्स में डेंगू बढ़ गया. इस बार का आउटब्रेक दिल्ली में बहुत मैसिव रहा है, पूरे भारतवर्ष में. मैंने जैसे नंबर्स में बताया, नंबर्स वर यू नो क्रेजी. तो क्या ये पूरी परिभाषा बदल रही है, ये वायरस का फॉर्म बदल रहा है?
5: एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज से 20 साल पहले डेंगू का बहुत सारे लोगों ने नाम तक नहीं सुना था. 2005 में डेंगू का आउटब्रेक दिल्ली में हुआ था, उसके बाद पूरे देश में खबर बनी, लेकिन तब भी यह वायरस सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में, अर्बन एरिया में रिपोर्ट किया जाता था, वहीं पर कुछ केसेज जाते थे. लेकिन पिछले 20 सालों में कई सारी चीज़ें बदली हैं. उनमें से एक हुआ है कि पहले डेंगू का, जैसा कि आपने बात की, वो जो केसेज आते थे वो यूजुअली बारिश के शुरुआत से और सितंबर अक्टूबर तक आते थे. लेकिन अब इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल की शुरुआत में ही देश में कई हजारों केस रिपोर्ट हो चुके हैं. फरवरी मार्च तक का डेटा अवेलेबल है. तो अब थ्रू आउट द ईयर केसेज आते हैं. उसे कई वजह, उनमें से एक मुख्य वजह ही है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो ऑल अराउंड द ईयर चल रही हैं. दूसरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. डेंगू जैसा कि हम जानते हैं एक वायरस इलनेस है जो मच्छरों के थ्रू फैलती है. जो मच्छर होते हैं उसका एडीज एजेप्टाई जो मेन वेक्टर है उसको फैलाता है. तो जो मच्छर होते हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर यूजली 8 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं. तो पहले क्या होता था, क्लियर ठंड पड़ती थी, एक्सेस समर होती थी, तो वो मच्छर होते थे, पनप नहीं पाते थे. लेकिन आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो स्टेबल सा बना हुआ है. कभी सर्दियों में भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे अब थ्रू आउट द ईयर हम न केवल डेंगू बल्कि अन्य बीमारियों को भी देख रहे हैं. तो बिल्कुल सच है, राउंड द ईयर पूरे देश में, कई राज्यों में, और काफी गंभीर तरीके से और काफी तेज तरीके से डेंगू फैल रहा है.
4: तो राउंड द ईयर आपने कहा ये फैल रहा है, तो
5: लगभग राउंड द एक्सेस विंटर्स जब होती हैं तब ऑब्वियसली मॉस्किटो उस समय नहीं सर्वाइव कर पाते हैं और हाइबरनेट कर जाते हैं. बाकी थ्रू आउट द जनवरी से लेके हम दिसंबर तक कह सकते हैं. और ऑफ कोर्स सीजनल वेरिएशन स्टेट के हिसाब से आते हैं. अगर नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सर्दी पड़ती है उस समय नहीं होता, लेकिन केरला तमिलनाडु में उस समय भी दिसंबर के आसपास भी केसेज आते ही. डेंगू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो आदमी सोचता है कि वो सब कुछ इसके बारे में जानता है, या फिर वो सोचता है कि इससे तो कुछ होना ही नहीं है, तो हर साल होती है बीमारी.
4: हाँ, और दोनों ही केसेस में फंस जाता है.
5: और दोनों ही केसेस में फंस जाता है, और इसी वजह से डेंगू इतना ज्यादा फैल रहा है.
4: जानलेवा भी है डेंगू?
5: अरे बहुत खतरनाक हो सकता है. एक्चुअली क्या है कि वायरल जो इलनेसेज होती है जिसमें डेंगू भी है, डेंगू जो आम भाषा में बोलते हैं वायरल इलनेस है, तो ज्यादातर केसेज में तो वो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. लोगों को मतलब हो गया, उनको पता भी नहीं चला या कुछ हुआ, बुखार आया. लेकिन किसको खतरनाक हो जाए ये पता नहीं चलता है. और डेफिनेटली 100 में से एक व्यक्ति को गंभीर डेंगू की इलनेस हो सकती है, और वो किसको होगी ये नहीं जान सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को थोड़ा और जानकारी हो, क्योंकि लोग सोचते हैं ठीक है बुखार है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी और को भी हुआ था, हम ठीक हो जाएंगे. लेकिन किसी और को हुआ इसका मतलब, और वो ठीक हो गया, इसका मतलब नहीं कि आप भी ठीक हो जाओगे. सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, और उसके क्या गंभीर लक्षण होते हैं, क्या चिंताजनक कारण होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए.
4: क्या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग हैं, जैसे प्रेग्नेंट विमेन हो या एल्डरली हो या जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो या कोई कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा हो, जो ज्यादा वल्नरेबल है डेंगू के लिए?
5: सोनल जी आपने तो जवाब दे दिया, मैं क्या बोलूं। बिल्कुल सही बात है
4: ये, मैं आपको बता देती हूँ, ये चैलेंज है मेरे साथ। मुझे लगता है रिसर्च करने में पॉडकास्ट की मुझे ऑलरेडी इतना पता होता है कि ये सचमुच में एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू आस्क।
5: सो खासतौर से आपने सारे जो लोग बोले, गर्भवती महिलाएं, बच्चों को, खासतौर से 10 साल से छोटे बच्चे और एल्डरली पॉपुलेशन, इनको गंभीर बीमारी होने की संभावना है। एडल्ट पॉपुलेशन होती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, उसमें कम होता है, कम गंभीर बीमारी होने की संभावना है या गंभीर बीमारी कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं हो सकती। किसको गंभीर बीमारी हो जाए हमें नहीं पता है। और एक चीज और है, उस व्यक्ति के ओवरऑल इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, साथ में अगर प्रीवियस या पास्ट में कोई डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं डेंगू के 4 टाइप सीरोटाइप होते हैं, तो अगर किसी और से हुआ है, फिर नई की वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो गंभीर बीमारी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है।
4: ओह, सो ये कोविड की तरह है, पता नहीं किसको कब हो, कितना इंटेंसिटी से हिट करेगा, लेकिन अनलाइक कोविड, अगर एक बार आपको हो गया है तो उसकी इम्यूनिटी नहीं है, सेकेंड टाइम होने में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
5: वेल, तो डेंगू के 4 सब टाइप होते हैं। डेंगू का जो टाइप 1 है वो सबसे कॉमन है, तो अगर जिस टाइप से आपको इन्फेक्शन हो गया उससे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल कोविड की तरह,
4: ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी हो गई आपकी,
5: इम्यूनिटी होगी, लेकिन बाकी 3 अगर जो हैं उनसे वो गंभीर बीमारी हो सकती है, उनसे फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर जिस टाइप से आपको इन्फेक्शन हुआ है उससे फ्यूचर में इन्फेक्शन हुआ तो गंभीर बीमारी की संभावना कम है, लेकिन किसी दूसरे टाइप से हुआ तो वो ऐसे मान के चलिए कि जैसे पहली बार हो रहा है।
4: तो ज्यादातर जो मेट्रोज में लोग रहते हैं, या अब मेट्रोज की परिभाषा भी देखिए इंडिया में बहुत बदल रही है, कानपुर लखनऊ भी अब मेट्रो जैसे यू नो सिटीज ही हो गई हैं, तो क्या ये कहा जाए कि जो प्रॉपर अर्बन सिटीज हैं वहां पर एक तरह का डेंगू होता है, बाकी जगह दूसरी तरह का डेंगू होता है?
5: नहीं, वायरस जो होते हैं पूरे देश में, एक बार कहीं पर भी पहुंच गए तो चूंकि जनता इधर से उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन हवाई जहाज से जाती रहती है, और बल्कि ऐसा होता है कि वही वायरस जो डेंगू आज से 20 साल पहले सिर्फ कुछ मेट्रो में, जैसे आपने बात की, था दिल्ली में 2005 के आसपास अगर मुझे सही से याद है, तो काफी गंभीर डेंगू की आउटब्रेक हुई थी, काफी लोगों की जान भी गई थी उसमें, और उसके बाद डेंगू न्यूज में आया, लेकिन
4: उससे पहले लोगों को आइडिया नहीं था डेंगू जैसी कोई बीमारी होती है।
5: उससे पहले लोगों को आइडिया नहीं था डेंगू जैसी कोई बीमारी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उससे पहले छोटे शहरों में और काफी सारे इंडियन स्टेट में डेंगू वायरस कभी डिटेक्ट हुआ ही नहीं था, और आज 20 सालों के बाद लगभग देश के हर राज्य में जहां पर भी सर्वेलेंस किया जाता है वहां पर डेंगू आ चुका है। दूसरी चीज है, पहले डेंगू था वो सिर्फ शहरों की समस्या मानी जाती है, कहते हैं कि शहरों में डेंगू होता है, लेकिन अब गांव देहातों में भी डेंगू होता है।
4: अच्छा,
5: उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि अब गांव में भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, गांव में तो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और वही लोग शहरों में रहते हैं, वही गांव में जाते हैं, अपने साथ डेंगू वायरस को लेके जाते हैं, तो अब गांव में भी डेंगू होने लगा है।
4: ओ,
6: आर यू रेडी टू टैकल दोस होम प्रोजेक्ट्स? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
7: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
8: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन डेंगू के बारे में ये है कि अगर ये एक वायरस है तो ये मच्छर के थ्रू कैसे पास हो रहा है? आप इसका साइंस हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं?
5: एक काफी इंटरेस्टिंग बात है और इसमें भी एक याद रखने की बात है कि जो मच्छर होते हैं उसमें फीमेल मॉस्किटो ही ह्यूमन बाइट्स करते हैं, बाकी मेल मॉस्किटो
4: आउच
5: सारे किसी भी स्पीसीज में, कई सारे जो मलेरिया का भी अनफ्रेज स्पीसीज होती है, जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो ह्यूमन ब्लड को सक नहीं करते हैं, वो फ्लावर से के थ्रू उनका सर्वाइवल होता है, लेकिन फीमेल ह्यूमन ब्लड, फीमेल मॉस्किटो
4: शी स्टिंग्स
5: बिकॉज फॉर द सर्व फॉर लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो टू ले द एग्स अपने मच्छरों के अंडे देने के लिए उनको ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है. ह्यूमन ब्लड से उनको अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे उनके लार्वा होंगे वो काफी हेल्दी होंगे.
4: हाउ फैसिनेटिंग.
5: सो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो. अब उस मॉस्किटो में अगर के जो लाइफ साइकिल का हिस्सा है, अगर उस दौरान डेंगी वायरस कोई डेंगी से इन्फेक्टेड है तो उसके ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा. अब वो जिस मच्छर ने, क्योंकि उसको सिंगल बाइट से सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता है, तो एक साइकिल में उस फीमेल एडीज मॉस्किटो जो डेंगी को फैलाती है उसको एक से ज्यादा लोगों का ब्लड सक करना होगा. तो अगर उसने पहले एक व्यक्ति का ब्लड सक किया, अगर उसमें डेंगी वायरस है तो उसके उसमें आ गया, फिर दूसरे व्यक्ति को ब्लड सक किया, तो जब मॉस्किटो बाइट करता है तो उस समय वो थोड़ा सा इंजेक्ट भी करता है तो वो वायरस दूसरे व्यक्ति को चला जाएगा, इसलिए मॉस्किटो बाइट के माध्यम से भी डेंगू फैल जाएगा.
4: लेकिन अब तो जैसे आपने कहा वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वायरस भी अडेप्ट कर रहा है उन सब चीजों को, तो अभी साल भर हो रहा है, तो इज इट सेफ टू से कि साल भर अब हमें यू नो कॉशियस रहने की जरूरत है?
5: इसमें मुख्य बात याद करने की हमें मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को अक्रॉस द ईयर प्रिवेंट करना है. एडीज का आर्टिफिशियल कलेक्शन जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, अब सबसे बड़ी चुनौती है मेजर सिटीज में कि कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है,
4: 24/7 चलता
5: तो कंस्ट्रक्शन साइट पे टायर पड़े होंगे, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होगा, पानी की बॉटल, मच्छर को ग्रो करने के लिए ज्यादा और लार्वा देने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है. अगर जो वाटर बॉटल के ढक्कन होते हैं कैप्स में भी इतना पानी भी अगर उनको मिल जाएगा तो उसमें मॉस्किटो ग्रो कर सकता है.
4: आई सी.
5: तो कंस्ट्रक्शन साइट के बढ़ने की वजह से अब अक्रॉस द ईयर हो रहा है. और साथ में जैसे कोई बस है, कोई मोटरसाइकिल रखी हुई है, उसके बगल में कुछ पड़ा हुआ है, तो कहीं से भी इस पर मच्छर ग्रो कर सकता है.
4: मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम सब बोल्स रखते हैं बर्ड्स के लिए जिसमें पानी पीने के लिए, डॉग्स के लिए, वो सारे मॉनसून में तो भरे ही रहते हैं, अदर समय भी पूरे साल भर भी भरे ही रहते हैं, तो वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है.
5: वेरी करेक्टली. या उससे भी ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है. तो उसको अगर आपको किसी को पानी देना है डॉग्स वगैरह के लिए तो उसको बदलते रहिए, उस वाटर कलेक्शन नहीं होना चाहिए, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं.
4: और कितने घंटे में?
5: सो मेरा अप्रोच इसमें यह है कि आपको वीक में एक दिन जो आपकी छतों पर घर के किसी भी हिस्से में उसको 10 मिनट निकालिए और जो भी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर है उसको हटा दीजिए.
4: अच्छा.
5: सो वंस इन अ वीक कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन जहां पे आप पानी भर के रख रहे हैं तो उसमें तो डेली बदलिए अच्छी बात है. वंस इन अ वीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर दिन उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, बारिश किसी दिन होती है कहीं घर रखे हैं, तो वंस इन अ वीक थोरो कॉम्बिंग ऑपरेशन कि हर जगह जाके देखना है कि आपके वाटर टैंक खुला तो नहीं है, वाटर टैंक के बगल में कहीं पडल तो नहीं बन गई है, छत पे कोई गमला तो नहीं है, और गमलों के नीचे रखने का जो प्लेट आती है उनमें भी कलेक्ट हो सकता है, कोई वाटर की बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है नीचे, पार्किंग एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ चीज है, तो हर जगह देखना है. वंस इन अ वीक अगर लोग 10 मिनट के लिए इस चीज के लिए टाइम निकालें तो एटलीस्ट आप अपने घर में मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट को प्रिवेंट कर सकते हैं और आसपास अपने खुद को बचा सकते हैं और आसपास के पड़ोसियों को बचा सकते हैं.
4: अच्छा, एक चीज हमने अपने बचपन में बहुत देखी थी कि जैसे ही मॉस्किटो का सीजन आता था, अब तो खैर आपने इस पॉडकास्ट में बता ही दिया है कि कोई सीजन नहीं होता है मॉस्किटो का, अब साल भर आपको मॉस्किटो से प्रिवेंशन करना है, लेकिन बारिश के समय कूलर्स में जरूर मिट्टी का तेल डाला जाता था. How does that prevent us from dengue?
5: So coolers में जो मिट्टी का तेल डालते हैं उससे, क्योंकि मिट्टी का तेल या केरोसिन केरोसिन होता है वो लाइटर हल्का होता है तो उस पर लेयर बना देता है और उससे एग्स और लार्वा जो उससे ग्रो नहीं कर पाते हैं और खत्म हो जाते हैं वहां से.
4: अच्छा, तो वो पानी का वही रिटेंशन हो गया.

0: तो वो एग्स होते हैं, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी मंथ्स टुगेदर इन इवन ड्राई एनवायरमेंट.
1: वाओ.
0: हाँ, इसीलिए वो एग कभी पहले ले किए गए हैं, तो उसके बाद जब मौका आता है तब वो उसमें से लार्वा निकलते हैं. सो जब राइट एनवायरमेंट होता है, सो फ्यूमिगेशन इज एडल्ट मॉस्किटो को हटा देगा. तो फ्यूमिगेशन करना चाहिए, एडल्ट मॉस्किटो की संख्या कम हो जाएगी. लेकिन उसके बाद प्रिवेंटिव इंटरवेंशन और बाकी मॉस्किटो लार्वा रिडक्शन स्ट्रेटजी भी करनी होगी, तभी वो इफेक्टिव रहेगा.
1: Which is basically पानी नहीं जमा होने देना है.
0: पानी नहीं जमा होने देना, और जहां पर भी मॉस्किटो एग्स एंड लार्वा की संभावना है उसको इलिमिनेट करना है आपको. जैसे पानी भरा हुआ है उसमें मतलब खाली कर दीजिए, लेकिन जहां पर भी संभावना है कि यहाँ लग रहा है उसको रगड़ के साफ कीजिए और कंप्लीट कीजिए.
1: ये ना बहुत काम लग रहा है मुझे डॉक्टर लहरिया. मुझे, मैं हर पॉडकास्ट करती हूँ, मुझे ये जरूर डर लगता है कि लोग कहेंगे अब इसके लिए भी काम करना पड़ेगा. आप क्या कुछ 5 टिप्स दे सकते हैं जो रेगुलर रूटीन में लोग करें कि कोई भी मच्छर हो या मच्छर से रिलेटेड डिजीज हो वो ना हो? 5 चीजें जो आपको अपने घर में बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए.
0: आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. पहला चीज तो है कि आप अपने घर में मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करिए. तो उसमें बहुत आसान है, 10 मिनट के लिए सप्ताह में एक बार निकाल लीजिए, घर का चक्कर लगाइए कि रेफ्रिजरेटर के पीछे हिस्से में जो पानी कलेक्शन की जगह होता है उस तक को खाली करिए, वहां पर भी मॉस्किटो ब्रीड हो सकता है. और घर के वाटर टैंक और नीचे नीचे जो पार्किंग में टैंक होते हैं, कोई भी खाली टायर वाटर बॉटल, तो एक तो घर का वो क्लीनिंग कर सकते हैं. दूसरा आपको करना है कि मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स हैं, खासतौर से अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो वो इफेक्टिव होते हैं, उनको ढंग से यूज कीजिए इवनिंग में या जब भी मौका होता है. तीसरा, मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं हो सकता, तो कॉलोनी या सोसाइटी के लेवल पर, तो आप आस पड़ोसियों को भी बताइए कि ये सारी सावधानियां बरतें. चौथा, अगर आप मॉस्किटो काफी सारे कंस्ट्रक्शन साइट हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं या पार्क में घूमने जा रहे हैं तो फुल स्लीव क्लॉथ पहनिए. और पांचवा, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कीजिए कि मतलब उनको फ्यूमिगेशन मेजर करें.
1: चलिए, अच्छा इलाज के बारे में विस्तार से बात करते हैं. डेंगी कहले सिम्टम्स मुझे बताइए. अगर मुझे एक मस्कीटो बाइट हुआ है या ना नहीं हुआ है, अगर मुझे फीवर अभी चढ़ गया है, किस स्टेज पर मुझे ये सोचना चाहिए कि अब मुझे डेंगी का टेस्ट कराना है?
0: वेल, सो यूजली यहाँ पे समझने की बात है कि जब मॉस्किटो ने आपको काटा तो उसके इमीडिएटली बाद डेंगी नहीं होता है. यूजली अच्छा. जिसको बोलते हैं कि जब एक्सपोजर हुआ, मतलब मॉस्किटो ने बाइट किया, उससे 3 से 14 दिन के भीतर डेंगी,
1: 3 to 14
0: इंक्यूबेशन पीरियड है. तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कभी मॉस्किटो ने कहीं किसी ऐसी जगह गए जहां डेंगी फैल रहा था, वहां से लौट के 2 आए और 2 सप्ताह निकल गए, उसके बाद बुखार आया, तो फिर आपको डेंगी नहीं है वो. मतलब 14 डे उसका लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन. यूजुअली उसके मॉस्किटो बाइट के 3 से 4 दिन के बाद आपको सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं. तो सिम्टम क्या होता है? फीवर से स्टार्ट होता है. तो चलो इसको समझते हैं. तो डेंगी के जो सिम्टम है, फीवर होता है, हाई फीवर होता है, मैं जा सकता है, लेकिन नॉर्मल 101 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, यूजुअली कुछ लोगों में 104 तक जा सकता है. दूसरा है बॉडी एक. तो बॉडी एक में जॉइंट एक्स होते हैं मेनली, एक जॉइंट और मसल एक. तीसरा, डेंगी का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है रिट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे दर्द होना डेंगी की निशानी है. हाँ, बाकी अलग लक्षण भी, काफी सारे तरह के लक्षण आ सकते हैं. किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, किसी को रनी नोज और कॉफ और कोल्ड, ये सब
1: गम्स में भी बोलते हैं,
0: वो ब्लीडिंग की बात आ जाती है. रैशेज, सर्टेन टाइप ऑफ रैशेज हो सकते हैं जो यूजुअली आपके हाथ पाम और सोल को छोड़ के बाकी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं. सो मैक्यूलो पेपलर रैशेज, उसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं लेकिन रैशेज हो सकते हैं, वो प्लेटलेट पे होते हैं. मैं जानता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है.
1: हाँ,
0: तो वो प्लेटलेट अगर कम हो जाती हैं, तो ब्लीडिंग के इनिशियल वो हो जाते हैं, तो तब उसमें बॉडी पर रैशेज आ सकते हैं, लेकिन हर केस में रैशेज आने की जरूरत नहीं. ज्यादातर लोगों को फीवर आता है, वो हाई फीवर होता है, थकान, कमजोरी और मसल एक एंड बॉडी एक होता है. बॉडी एक मसल एक होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट लाइक अगर डेंगू सीजन चल रहा है तो डेंगू है. अगर चिकनगुनिया फैल रहा है तो चिकनगुनिया में भी वही सेम लक्षण होते हैं, लेकिन वो सीजन कौन सा वायरस वहां फैल रहा है उसके ऊपर है.
1: तो अगर आपको फीवर है, जैसे डॉक्टर जनरली, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके बच्चे को फीवर है और नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा कि चेक करिए बॉडी में कहीं इंसेक्ट बाइट्स तो नहीं है. फिर वो ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में निकल कर आएगा कि कौन सा वायरस है अगर है तो, एंड उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट होएगा. अगर आपका अब डेंगू पॉजिटिव निकला है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा?
0: देखिए, डेंगू पॉजिटिव निकला है तो ट्रीटमेंट

0: सेम रहेगा। अब आपको पता चल गया कि डेंगू है तो थोड़ी सावधानी बरतनी है और आपको डेंजर साइंस पता होने चाहिए, जैसे वॉमिटिंग आए, अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी भी शरीर के हिस्से से, स्टूल आपका ब्लैक कलर का आने लगे, तो उन डेंजर साइंस को जानना है। यूजुअली जो क्रिटिकल डेंजर साइन वाले सिनेरियो आता है वो तब आता है, सो जो पहला स्टेज होता है फीवर, सो यूजुअली 3 से 4 दिन में फीवर चला जाता है, जो 7th डे ऑफ उसका इलनेस होता है उससे क्रिटिकल पे, जब फीवर जाने के बाद व्यक्ति क्रिटिकल हो सकता है। तो एक चीज याद रखने की डेंगू में कि फीवर उतर सकता है लेकिन तब भी वो व्यक्ति क्रिटिकल हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो ट्रीटमेंट सेम है, बस कंफर्म हो जाता है तो उसके आधार पर आप अधिक सावधानी बरत सकते हैं। आपको फ्लूइड्स लेना है, पैरासिटामोल लेनी है, लेकिन जो नहीं लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो खासतौर से आपको जो आइबुप्रोफेन आती है या बोबेरॉन आती है या एस्पिरिन आती है, जो ब्लड थिनर का काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, कुछ दवाइयों को जैसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, जब पैरासिटामोल के अकेला लेना है वो सेफ है, लेकिन बाकी दवाइयां थोड़ी हार्मफुल हो सकती हैं, तो डॉक्टर आपको बता देगा कि कौन सा वो कौन सी दवाई नहीं लेनी है।
1: कॉम्बिफ्लेम
0: नहीं ले सकते,
1: नहीं ले सकते
0: अगर डेंगू है तो, नहीं लेना है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करेगी और उसमें सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट को अफेक्ट कर सकती है।
1: तो एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा लेसन ये होना चाहिए कि अगर आपको फीवर है तो सबसे पहले जाके एंटीबायोटिक ना खाएं।
0: Definitely.
1: सबसे अगर आपको जरा सा भी लो ग्रेड फीवर है और आप डॉक्टर को परेशान नहीं करना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं क्लिनिक में, एक बेसिक पैरासिटामोल खा लें और कोई भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन ना खाएं। दैट्स व्हाट यू सेड।
0: एग्जैक्टली।
1: ओके ओके।

0: Now, circling back to one of those stories, an exclusive interview of Lovleena Borgohain on Northeastern Kashmir map, wherein it was an Indian restaurant, which we were just telling you about, where they were having food, and few people told her that the napkin and logo of the restaurant had an Indian map printed where the Northeast was missing and Kashmiri part was also incorrect. And she came out to express her voice against it. And in a very graceful manner, she pointed it out, flagged it. Now, in an exclusive conversation with her, listen in to what exactly happened in that exchange and how she expressed herself with regards to how she felt. And also the Boxing Federation of India, the president of the BFI, was also present with her, who amplified her voice there. Listen in to what's been said.
1: तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सर्स ने अपना जो पंच था ना वो जम के लगाया, क्योंकि जितने मेडल्स इस बार हमें बॉक्सर्स ने दिलाए हैं शायद वो सबसे बड़ी वजह है कि मेडल टैली में हम अब और ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लवलीना इस वक्त मेरे साथ हैं, इस बार सिल्वर मेडल के साथ वापिस आ रही हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है जब एशियन गेम्स में जाएंगी तो कलर मेडल जो मेडल का वो जरूर चेंज होगा। लवलीना, इस बार ग्लासगो में एक्सपीरियंस कैसा था और क्या बॉक्सिंग की टीम ने घर में ये सोच के ही गई थी कि यार हम ना डोमिनेट कर देंगे जितने भी सामने वाले जो बॉक्सर्स होंगे उनको?
2: बहुत अच्छा फीलिंग है क्योंकि हमारे बॉक्सिंग ने जो बॉक्सर्स ने जो किया है, हमारे टीम ने जैसा किया है ना, पूरा हिस्ट्री में शायद ऐसा हुआ है कि हमारे बॉक्सर्स ने इतना ज्यादा मेडल लेने के लिए हुआ है इस बार, उसके लिए मैं बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे
1: हैं। ऐसा पहली बार हुआ आपके साथ आई थिंक कि बिना यू नो बाउट खेले आपका मेडल पक्का हो गया था, तो वो टाइम चूंकि हर एथलीट के लिए होता है ना कि मैं तैयार कर रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर रही हूँ, मैं जाऊंगी, मैं फाइट करूंगी, बट वो एक बाय मिलना, उसके बाद बॉक्सिंग की पूरी टीम ने जो कमाल किया, ये चीज आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मेंटली आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, सो वो चीज का इम्पैक्ट कैसा रहा?
2: ये मेरे लिए भी बहुत एक बड़ी बात था क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पहले बार जाके ही सेमीफाइनल मिलना, और कॉमनवेल्थ गेम्स में, बल्कि मेरा दो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल भी नहीं था, और इस बार आके ही डायरेक्ट सेमीफाइनल। और ये मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि मुझे ऐसा चांस मिला। और उससे एक तो है कि हमारे पूरा टीम का मोटिवेशन और भी बढ़ गया कि हमें सबको अच्छा करना है और भी मेडल लेना है। और उसके बाद जो हमारे इंडिया टीम ने किया है वो तो मतलब सबको पता है अभी। और मेरा लास्ट में थोड़ा सा उससे रह गया, मैं सिल्वर में रुकना पड़ा मुझे। ये गोल्ड होता तो मैं और भी ज्यादा खुश हो पाती, बट मैं कोशिश करूंगी कि एशियन गेम्स में मैं और अच्छा करूँ और इस बार मैं अपने देश को गोल्ड मेडल दूँ।
1: बस फाइनल बाउट के बारे में बताइए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर थी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को सेव भी कर रही थी, आपकी तरफ से हमें अटैक देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन रिंग में क्या कुछ चल रहा था वो आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं।
2: मेरा लास्ट राउंड में थोड़ा सा उससे रह गया, मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं अपने अपनी तरफ लाऊं, बल्कि बहुत क्लोज गया है मैच, सबने देखा होगा, और उसको कट भी लग गई थी और उसके बाद भी वो खेल रही थी और मैं भी पूरा कोशिश कर रहा था, तो फाइट बहुत ज्यादा टफ था। मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी, मैं पूरा कोशिश किया कि मैं जीतूं और मैं शायद मैं जीत भी सकती थी, बहुत ज्यादा क्लोज था फाइट, बट ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें ओलंपिक तक जाना है, तो नेक्स्ट टाइम।
1: और ओलंपिक में भी मेडल का कलर चेंज करना है
2: जरूर।
1: तो अच्छा, आखिरी के कुछ सवाल लवलीना, इस बार क्या हुआ ना कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे, जिसका सीधा और साफ असर हमारी मेडल टैली पर पड़ा है। पिछली बार आप देखिए हमारे मेडल्स बहुत ज्यादा थे, लगभग 69-70 मेडल्स थे, जिसे उसमें अच्छे खासे गोल्ड थे। इस बार वो गोल्ड्स का भी नंबर थोड़ा सा कम है, सिल्वर का भी कम है और ब्रॉन्ज का भी कम है। एज एन एथलीट आपको ये डिसीजन कैसा लगता है ऑर्गेनाइजर्स का कि भाई वो जो डिसिप्लिन जिसमें इंडिया डोमिनेट करता था वो डिसिप्लिन वहां पर नहीं थे और साफ असर पड़ा मेडल टैली पर?
2: ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है, एक तो मेडल टैली पे भी जो इफेक्ट पड़ा है और ऊपर से हर एक एथलीट के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ही कंपटीशन मिलता है। गेम्स तो हम लोगों के पास तीन ही गेम्स है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स। इसमें भी अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए नहीं मिला तो एथलीट के लिए भी बहुत बड़ी लॉस है, और हमारे देश के लिए तो लॉस है ही, क्योंकि इतने सारा मेडल हमें नहीं मिल पाया। ये तो मतलब नेक्स्ट टाइम जैसे नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को हर हर इवेंट को खेलने के लिए मिलना चाहिए। ये एक बहुत इफेक्ट हमारे मेडल डेली पे भी पड़ा है। हाँ
1: बिल्कुल। एक और एक सवाल, हालांकि वो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस बात का जिक्र किया, आप एक रेस्टोरेंट में गई थी, उस रेस्टोरेंट के नैपकिन के ऊपर में मैप नहीं था नॉर्थ ईस्ट का, कश्मीर के बारे में भी। एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो, मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली।
2: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे। पूरे इंडिया का सभी लोग थे उधर, और हम लोग खाना वाना खाने के बाद इतना ध्यान में नहीं आया था, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है, हम लोग यहाँ क्यों खाना खाया, हमें तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा ऐसे बताया। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं लिया कि ठीक है ऐसे सोच के। फिर मैं बाहर आई, बाहर देखा पूरा रेस्ट जो वहाँ सिर्फ नैपकिन पे नहीं, एक बड़ा उन लोगों का लोगो लगाया हुआ है जिसमें भारत का मैप में नॉर्थ ईस्ट का मैप कटा हुआ है, और उनका पूरा रेस्टोरेंट में भी दोनों साइड में मैप है, बट दोनों मैप में नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि ऐसा कैसे कर सकता है ये, भारत का मैप को ऐसे कैसे कट कर सकता है। तो मैं गई और वहां पे बहुत डांस गाना भी गा रहे थे सब लोग, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा था, पूरे इंडियंस थे हम लोग, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने पहले तो सबको थैंक यू बोला, बट मैंने अपना बात भी रखा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को ऐसे नहीं कट कर सकता है। तो ये मेरे को बोलना बहुत, मैं अगर मैं नहीं बोलती तो शायद मैं निकल के आके वहां से मैं अपने आप को रिग्रेट फील करती, तो मैंने इसीलिए बोला, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया बोल के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। क्या आपकी बात वहां के किसी मैनेजर से हुई या फिर उस रेस्टोरेंट के ओनर से हुई? आप उनकी तरह आपने जो बात कही उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, गलती मानी? क्योंकि इंडिया का मैप जो है वो एक कलेक्टिव मैप है, आप किसी को ऐसे ही रिमूव, किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं कर सकते। इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी वहां पर?
2: हाँ, उनके ओनर ने ही आया और मेरे से बात किया, कि वो बोला कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको, बट मैंने बोला कि प्लीज आप लोग इसको चेंज कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगा, हम किसी भी नॉर्थ वाले को अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा बोला बस।
1: नहीं, बिल्कुल
2: वो
1: ठीक
2: लोग
1: है।
2: सॉरी भी बोला वैसे वो लोग।
1: ओके
2: यस
1: ओके, सॉरी बोला, वो बड़ी चीज है,
2: यस
1: क्योंकि गलती का
2: जी
1: एहसास होना बड़ी चीज है। और जैसा कि आपने कहा
2: जी
1: कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मैप चेंज करेंगे, बट क्या
2: जी
1: सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का मैप का पार्ट नहीं था उस मैप के ऊपर में, या फिर हमारे देश के जो और भी अलग अलग हिस्से हैं उस मैप पे वो भी मिसिंग थे, कुछ आपने नजर डाला?
2: हाँ, थोड़ा सा कश्मीर का भी मैप सही नहीं है, बल्कि कश्मीर का और नॉर्थ ईस्ट का, वो दोनों थोड़ा सा कटा हुआ है मैप में।
1: दोनों कटा हुआ है मैप पे,
2: यस
1: बट फाइनली आपके कहने के बाद ओनर्स ने बोला है कि वो इसको रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे।
2: सही करेंगे बोला। यस
1: आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि एज एन इंडियन हम इन चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा जो मैप है वो कहीं से भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो। बट रनिंग बैक टू द स्पोर्ट्स, एशियन गेम्स के लिए लवलीना अब यहां से तैयारी करेंगी, और ये जो अभी यहां पर सिल्वर मेडल है उसको कन्वर्ट करना है गोल्ड मेडल में।
2: जी, थैंक यू सो मच, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट एशियन गेम्स में इसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट करूं। थैंक यू सो
1: थैंक
2: मच।
1: यू, थैंक यू लवलीना, थैंक यू सो मच।
0: ऑन दैट नोट, वी आर नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू हाउ इट वाज एन एक्सीलेंट शोइंग फॉर इंडियाज वुमेन बॉक्सर्स ऑन द पेन अल्टीमेट डे ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। सिक्स वुमेन बॉक्सर्स वर इन अ कंटेंशन फॉर अ गोल्ड मेडल एंड फाइव एंडेड अप फिनिशिंग ऑन टॉप ऑफ द पोडियम। हियर्स अ स्पेशल स्टोरी ऑन हाउ वुमेन पावर वॉज एट अ फुल डिस्प्ले एंड इट लेड टू इंडियाज गोल्ड रश इन ग्लासगो।
3: Indian fans have had to wait a bit for multiple gold medals to be won on the same day of the 2026 Commonwealth Games.
4: So that covers coveted top spot.
3: But as the old saying goes, when it rains, it pours. It was Preeti Pawar who got the ball rolling with a dominant victory in the women's 54 kg category, the first boxing medal for the nation in this year's edition of the Games.
4: Concentration has been immense, but the punch output.
3: And it wasn't long before one gold medal in boxing became two, as Jasmine Lamboria notched up a victory in the women's 57 kg category just 10 minutes later.
4: Certainly inconvenient, White.
3: Then Sakshi Chaudhary made it a hat-trick of gold medals when she won the final in the women's 51 kg category in comfortable manner. And the fourth medal came barely 15 minutes later, courtesy of Priya Ghangas, who won the women's 60 kg category final via a split decision.
5: Priya! It's gone to India once again.
4: In this contest between Orthodox and South,
3: the five-star showing from India's women boxers was completed by Arundhati Chaudhary, who won the women's 70 kg final in dominant fashion by a unanimous decision.
6: Champion in the red corner from India, Arundhati Chaudhary.
4: A series of very impressive displays where she had a really tough run to that coveted top spot on the podium.
3: Lovlina Borgohain was guaranteed a medal even before the games began, but she lost a close final in the women's 75 kg final and had to settle for a silver medal instead of gold.
6: It's no Commonwealth Games.
3: Sports Bureau, India Today.
6: In the red corner from Australia, Emma Sue Greentree.
0: On that note, viewers, we are shifting focus to the political arena and specifically to the state of Punjab as we speak. The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections, with supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raising loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership, wherein senior leader Razia Sultan rebuked the party workers and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying the Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs and Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption, along with the Akalis, that is, and the drug culture being also promoted by both.
7: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ,
8: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
9: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
0: On that note, Kamaljeet Sandhu joining us on the broadcast with more details on the same. Kamaljeet, we have been tracking the story for the last couple of hours, how both sides seem to have come in with their own points to put across. Even for that matter, Channi has put up a message, a peaceful message for that matter, an appeal for peace and also an olive branch of sorts, if one may look at it like that. How are we looking at it right now? After all that's been said, the entire episode, the chaotic episode that unfolded on camera as well, it does come in as a bit of a shame for the Congress at this given point, wouldn't you say?
2: It is utter chaos in Congress. There is a Zindabad Channi sloganeering happening, flying chairs, and then repeated disruptions in Congress meeting. The writing seems to be on the wall as far as Congress party is concerned, that if they do not solve this particular mess, this is going to play out in elections, which is due in the next 5 to 6 months. Now, there has been factionalism, which is something which we've seen in Congress party, not just in Punjab, but just elsewhere in Himachal Pradesh, Karnataka, elsewhere also. But in Punjab, where they're looking at, and their stakes are very high, because remember, there's anti-incumbency, the Aam Aadmi Party is looking for another term to come back to. Congress Party is also trying to regain power. And in midst of all this is a replay of 2022. Now, way back in 2022, Congress Party only managed to get 18 seats. Way back in 2017, when they were in power, they got 77. So this is something which is a matter of grave concern to party men who are saying the matter is not being addressed despite the party high command knowing it all. Now, Bhupesh Baghel, who is the party in charge for Punjab, is the one which has done to and fro movement from Punjab to Delhi. And last time also around, what we saw is that the Channi faction did not really actually pay heed to Bhupesh Baghel, and many actually took the matter to the party high command. But meanwhile, the message was large and clear that it is Baghel and KC Venugopal who are going to deal with this, and the party men were expected to fall in line. But what has really happened is that the angst against Raja Amrinder Wadding, who is the PCC chief, is something which continues to simmer within Punjab, and that is why what we see is sloganeering happening. Now, what we saw in Patiala and Sangrur yesterday was not just ruckus being created, they also saw about chairs being hurled, and this is where what we saw is Punjab Chief Minister now hurling a jibe at Congress Party, saying they're not the ones who are looking after Punjab sentiments. They're only worried about their own power tussle. They're talking about the kursi. And this is what is going to really hurt Punjab Congress, that things are not really going well. But here's a chance. The Punjab Party actually came together for a moment where the Cockroach Janata Party was holding protest in Jantar Mantar. We saw during Rahul Gandhi being taken away, Charanjit Singh Channi, we also saw Pratap Bajwa, we also saw a whole lot of leaders putting their weight behind Rahul Gandhi, but it seems it was only a matter of moment. Bad things in Punjab seem to be out of control as far as Punjab Congress is concerned. Now, in a rather twist and a sudden turn, we also saw Raja Amrinder Wadding, who's been in cynosure of all eyes, raising slogans in favor of Charanjit Singh Channi, raising slogans in favor of Pratap Bajwa. But this is only buying peace, piecemeal peace, if I can say so. There has to be an issue which needs to be addressed. And the longer it goes, party insiders say this is only going to continue. Now, there is also an ongoing meeting in Mansa. And remember, today is day 3. So next couple of days, we're going to see a repeat
10: repeat scenario until and unless the party high command really addresses the issue and brings the party together itself. Otherwise, what we're going to see is a repeat of 2022, where Channi versus Navjot Singh Sidhu really cost Congress party a lot. And this time, again, there seems to be a deep divide and factionalism in
0: Very
10: Punjab
0: true.
10: Congress.
0: Very true, Kamalji. Do stay with us. We have some more news coming in that we will require more details on. Let me just take our viewers through the preliminary information that we are first getting. BJP gears up for Punjab polls. BJP Punjab appoints six new district presidents. BJP Punjab state president Sardar Kewal Singh Dhillon has appointed six new district presidents in Punjab with the aim of further strengthening the organization. The list of newly appointed district presidents is as follows. From Faridkot, we have Sardar Sandeep Singh Brar. From Hoshiarpur Rural, we have Shri Sanjeev Manas. From Hoshiarpur Urban, we have Shri Nathan Gupta Nanu Khanna and Shri Anup Sharma, Shri Muktasar Sahib, Sardar Kuldeep Singh Bhangewala, and Sangroor, we have seen Shri Sarjeevan Jindal being nominated. State President Sardar Kewal Singh Dhillon expressed confidence that they would further strengthen the party in their respective districts with utmost sincerity, dedication and organizational capability. Now, these are the names that have come to the forefront. Let me take this up with Kamaljeet. Kamaljeet, what more are we learning in terms of details of the names of these six new district heads that have been appointed?
10: Well, BJP is trying to portray itself as a serious player. But remember, as far as their own performance is concerned, it has been dismissal. But we are also talking about their own alliance with Shirobhani Akali Dal. But this time around, they're very sure they want to go all alone. They're not going to have any tie-up with Shirobhani Akali Dal. And this is the time they're emerging as one of the big players or as claimed by the BJP leaders. But meanwhile, this is a multi-corner contest and there are not just about parties like the Aam Aadmi Party, the Congress, the Shirobhani Akali Dal. There are also the players like the Amritpal's party, Waris Punjab, there is Shirobhani Akali Dal, Punar Surjeet. So there are multiple parties which are going to be playing an important role and foray into this particular elections. But meanwhile, BJP has been trying to actually put its own house in order. And first of all, it was the appointment of Kewal Singh Dhillon. After Sunil Jhakad, they have appointed a Sikh face, a Jat Sikh face. And this is where they're actually trying to put a serious face. Many especially experts that we've been speaking to, they're saying a lot now needs to be done. And obviously, what we've seen in Delhi with the Kokra Janta Party students coming out, this seems to be, as they say, is a momentum which is going to be difficult for Punjab's BJP. And meanwhile, the other thing which has been accused by the other opposition parties against BJP is that they have imported leaders, that they don't have their own grassroots workers. So this is something that they're consistently working on, and obviously going down to the villages, to towns and cities, because what we've seen in the past also is that BJP does have an urban hold, but meanwhile getting to the grassroots and to the villages, and some would say that it's also the Panthik parties that they have to compete with, is going to be an uphill task for the BJP. But meanwhile, they're getting and having an organizational structure where they're hand-picking faces and leaders who think can get masses to actually put their weight behind these particular leaders is something that the BJP is strongly working at.
0: Right, absolutely, Kamaljeet. Thank you. We do see all political parties in Punjab right now gearing up for elections. They're already entering the election mode as we speak, with the political landscape clearly heating up, with infighting on one side, with party appointments being made on the other side. And we will be tracking all of that right here. But we're shifting our focus right now to another story. This is the Ram Mandir Charhava Chori that's triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. One that started right within the premises of the parliament. Senior Congress MP Pramod Tiwari has in fact now come in to train his guns on the Prime Minister over the very controversy. Pramod Tiwari made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict, clearing the way for its construction.
11: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
0: And it doesn't end there, the entire episode that we are speaking of, because on the parallel side, there is another episode that's brewing, politically speaking, on this entire matter of Ram Mandir Charhawa Chori case. Opposition MPs had staged a satirical skit outside the parliament that's triggered a major blow. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft, dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and leader of opposition Rahul Gandhi had made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders because hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities across the country, condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav both for the very skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avadesh Prasad for the same. A BJP delegation led by MP Basuri Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. In fact, the complainant has said that their street play outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, reacting to the FIR and the other complaints against him. Pappu Yadav has said he does not care about the BJP's criticisms and will do it again no matter how many cases are filed. He's also questioned whether highlighting donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong.
12: पूरी मर्यादा में किसी व्यक्ति को कोई गाली तो नहीं दिया, किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
13: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
12: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में को हमारे नेता राहुल गांधी को LOP को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब गरम मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
14: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास न करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
0: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates through the day.
13: You are watching India Today.

0: before that, let's quickly first take a look at the stories making the headlines. Congress infighting peaks ahead of Punjab elections. Former Punjab Chief Minister supporters raised Channi Zindabad slogans at a key party huddle. State Congress Chief Amrinder Waring steps into damage control mode, urges supporters to refrain from sloganeering. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, meanwhile, mocks Congress and says the party is fighting for power and not Punjab. Bitter war of words over Ram Mandir. Charawa Chori peaks. Congress MP Pramod Tiwari takes a personal jibe at Prime Minister Modi over January 2024 Pran Pratishtha. Asks, where was Prime Minister Modi's Sita during the rituals? Floods and landslides continue to wreak havoc across Kerala, leaving 8 dead and several missing. An orange alert remains in place for 12 districts. India Today reports from the ground as the situation remains grim.
1: One of the worst affected regions in the heavy rainfall that Kerala witnessed last night. And as you can see around me, this entire region is filled with water.
0: Chief Minister V.D. Satheesan reviews Keralam flood situation but also faces opposition fire over his alleged misplaced priorities. This after he unveiled a jewellery store in Kochi and attended a feast in Malappuram. Prime Minister Modi flags off Nasha Mukt Yuva Viksit Bharat campaign, a fight against use of drugs by youth, urges youth to stay away from substance abuse, says drug addiction disturbs concentration, distances young people from their dreams and weakens the nation's future.
2: Aatmavishwas se bhar drugs kuch samay ke liye high deta hai lekin आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देगा।
0: ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन पॉइंट्स आउट अ मैप ऑफ इंडिया प्रिंटेड ऑन अ रेस्टोरेंट नैपकिन्स हैड ओमिटेड नॉर्थ ईस्ट। बॉक्सर सेज डिपिक्शन वाज हर्टफुल, अर्जेस रेस्टोरेंट टू एंश्योर इट रिप्रेजेंटेड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री करेक्टली।
3: मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया मैप में हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
0: Now we're starting the bulletin with our focus on Punjab. The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 Assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked party workers and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with the damage control, urging supporters to refrain from sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying the Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating senior leaders. He's added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring. But Punjab Chief Minister, meanwhile, Bhagwant Mann, has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann says, and I quote, "We sit on chairs, but Congress throws them." Mann has also accused the Congress, as well as the Akali Dal, of neglecting Punjab and nurturing corruption and promoting drug culture in the state.
4: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
5: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
6: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
0: Another big story that is developing. The Ram Mandir Charawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi himself over the controversy. Pramod Tiwari has made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He's also alleged that the temple was inaugurated before completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict clearing the way for its construction.
2: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
0: On the other hand, opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilled over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
7: पूरी मर्यादा में किसी व्यक्ति को कोई गाली तो नहीं दिया, किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
8: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
7: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब करा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
9: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
10: पूरे देश में लोग गुस्से में, आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो इससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही है, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो, आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
11: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते। सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
12: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
13: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
8: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्देश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
0: सर्कलिंग बैक टू द लास्ट डिटेल दैट वी वर ब्रिंगिंग अप, विच इज विथ रिगार्ड्स टू दैट अटैक ऑन पप्पू यादव। हाई ड्रामा अनफोल्डेड एट द इंडिपेंडेंट MP पप्पू यादव दिल्ली रेसिडेंस आफ्टर अ मैन अलेजेडली हर्ल्ड अ शू एट हिम ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडिंग टू केओस एंड अ स्कफल बिटवीन द MP सपोर्टर्स एंड द अटैकर। The incident took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram Temple offerings and opposition's kit at Parliament over the same. Now, reacting to that attack, independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him and that he claimed that people present at the spot rescued him during the very incident. If not for them, he would have been grievously injured. Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, the alleged attacker has been identified as Sumit. According to the preliminary information that's come in about him, he allegedly threw a shoe at Yadav and was also carrying a knife. It is learned that the attack was reportedly linked to the MP's remarks and the skit on the temple issue. Police have initiated an investigation and are examining the circumstances surrounding the very incident. Meanwhile, listen in to what Pappu Yadav had to say after the attack.
14: सब प्रेस के साथी थे ही, वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तू तो चल ही रहा है, कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे।
15: पप्पू जी एक जन नेता है, जन नेता का मतलब 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
0: Meanwhile, turning our focus down south now, Kaveri water from the swelling Kabini Dam has eased Tamil Nadu's crisis, but not the political storm around it, clearly. TVK, Congress, BJP are all training their guns on Karnataka Chief Minister DK Shivakumar as a Supreme Court showdown seems inevitable now. What exactly has gone down to reach this very point in the entire debate between the two states, Karnataka and Tamil Nadu, over the Kaveri matter? Take a look at this report.
16: Karnataka's release of roughly 12,000 cubics from the Kabini Reservoir has brought some relief to Tamil Nadu. The Kabini Reservoir is full after monsoon rains, leading Karnataka to release water to Tamil Nadu. But Karnataka Chief Minister DK Shivakumar has vowed to move Supreme Court.
17: I am appealing to all the organization. We are there to fight for the state. We will protect the interest of the state. We have to respect the law of this country. We have to respect the sentiments of the people.
16: After an all-party meet in Bengaluru, the DKS has come under opposition's glare.
18: Due to the sufficient inflow of water in Kaveri Basin, time being there is no problem in releasing water to Tamil Nadu. But what we have suggested in the meeting, it is the responsibility of the Chief Minister to protect the interest of the farmers.
16: While Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay opted out of his proposed visit to Bengaluru and meet DKS, the Karnataka government is facing fire from Congress allies in Tamil Nadu, including TVK and PMK. In Chennai, Tamil Nadu Energy Minister CTR Nirmal Kumar has gone on the offensive, accusing DK Shivakumar of giving political brownie points to DMK.
19: அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் டி கே சிவகுமாரிடம் இருக்கிறது. அவருக்கு பெரிய உதவியாக அவரும் இருக்கிறார். இவர்களும் அதுக்கு தேவையானபடி இதை நடந்து கொள்கிறார். இல்ல, அவர் காங்கிரஸ் சொல்ற தலைமை சொல்றதே கேட்கிற நிலைமையில் இல்லை. அவர் திமுக தலைமை சொல்றதான் கேட்கிற நிலைமை இருக்கார். இவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளவு ஒரு உட்புறம், அவ்வளவு ஒரு நல்ல உறவு இருக்கிறது. அவர் அங்கு காங்கிரஸ் தலைமை சொன்னாலும் கேட்கிற நிலைமையில டி கே சிவகுமாரில்.
16: PMK's Anbumani Ramadose has alleged that DKS is using Kaveri waters merely as a flood control channel for surplus water. At the same time, Tamil Nadu State BJP President Nayanar Nagendran has slammed DK Shivakumar for first inviting CM Vijay for talks and then backing off.
20: அப்படி சொன்ன கர்நாடக சிவகுமாரை நான் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நான் பலமாக நான் கண்டிக்கிறேன்.
16: Will monsoon rains bring respite in the water wars or another round of showdown in Supreme Court is inevitable. Bureau Report, India Today.
0: A fierce spell of rain triggered landslides and flash floods across Kerala. 27 houses completely destroyed, nearly 200 more damaged. The Indian Meteorological Department, meanwhile, has issued an orange alert for 12 districts. The situation on the ground continues to remain grim, even as the rainfall has stopped for a few hours in the day. Here's a news report on how things look on the ground there.

0: you're dead? Many missing and thousands displaced. Nature has unleashed its worst fury in God's own country. Flash floods have triggered landslides and waterlogging in various districts. India Meteorological Department issued orange alert for 12 districts including Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Idukki, Ernakulam, Wayanad and Kannur. Thousands from low-lying areas have been moved to around 209 relief camps across the state.
1: We are in Rani, Pathanamthitta, again one of the worst affected regions across the state, because the entire town was facing severe waterlogging in one day's heavy rainfall. This is the LPG school in Rani, and we are learning that when it started raining heavily, when the water level started increasing, they had to run after their houses and shift to these camps. There are 10 families and around 22 people staying here, including men, female, male, female, and also children. They're saying that they ran in those same clothes that they were wearing. They couldn't take any of their belongings or anything. And it was later the district authorities that came over and gave them clothes to change, and also some of the essential necessities, to stay here till the situation gets better. Now the situation is clear there, but they'll have to clean and, make the house in a livable condition and then shift back to their homes.
0: In several districts, roads turned into rivers. The situation remains serious, with floodwaters entering homes in parts of Kottayam and Pathanamthitta.
1: Well, we are in Aranmula in Pathanamthitta, where severe waterlogging is still affecting many regions here. There's a major relief from rainfall, but the waterlogging continues in some regions, and this is the one region where there is severe waterlogging. And you can see around me there are many houses. All of these are empty, and as people have moved to various camps, it might look like I'm moving in a water body, but no, that's not the case. In fact, it's a road. It's one of the main roads here, and since it's filled with water, people are now using boats to commute from one location to another. Now around 8 deaths have been recorded across the state, and also around 200 houses have suffered damages.
0: Following the widespread damage caused by the rain, Chief Minister V.D. Satheesan convened an emergency review meeting and directed ministers overseeing affected districts to remain on the ground to coordinate relief measures. Authorities are urging people in the hills and low-lying areas to stay vigilant, but the situation on the ground continues to remain grim. With Shibi Mol KG in Pathanamthitta, Bureau Report, India Today.
2: Now, as Keralam is battling flood fury, there is political row that's also escalating over the entire situation. Why so? Well, Chief Minister V.D. Satheesan has now come under fire for his alleged misplaced priorities. What are these misplaced priorities that's being referred to here? Because he was seen attending a feast that was hosted by an IUML leader in Malappuram. Then he was also seen unveiling a jewellery shop in Kochi. The opposition in the state, CPM, has sharpened its attack on the newly elected chief minister, saying that the timing of the feast is ill-timed as thousands of Keralites are struggling amid the monsoon fury. On that note, let's take you to a story that's coming from a boxer who was at the Commonwealth Games representing India. But this story is slightly on a different note. It's a dinner that was organized to celebrate India's record-breaking boxing campaign at the Commonwealth Games 2026 that took an unexpected turn after the Olympic medalist Lavlina Borgohain flagged a map of India printed on the restaurant's napkins. Why? Because they'd omitted Northeast region entirely and also a part of Jammu and Kashmir. The boxer, who hails from Assam, said she was disappointed to find the inaccurate depiction, not just on the napkins, but also all over on the displays outside the restaurant. Calling the omission hurtful, Lovlina urged the establishment to ensure that every part of the country was indeed represented and represented correctly going forward. Her concerns were echoed by the Boxing Federation of India President Ajay Singh, who also pointed out a second discrepancy, that the map had failed to depict Jammu and Kashmir as well. The controversy erupted just hours after India completed its most successful ever boxing campaign at the Commonwealth Games, winning 5 gold medals, 1 silver, a historic show that had brought the continent together for what was meant to be a celebratory evening.
3: बाहर भी वहाँ लगा हुआ है कि हमारे भारत का मैप को कट कर दिया हम नॉर्थ वालों के लिए
4: बहुत कश्मीर
2: Earlier, my colleague Nitin Srivastav spoke to superstar boxer over the same, and she has expressed how it's everybody's responsibility in such situations to flag it, highlight it, and at the end of the day, demand a correction. Listen in.
5: आप एक रेस्टोरेंट में गई थी, उस रेस्टोरेंट के नैपकिन के ऊपर में यू नो मैप नहीं था नॉर्थ ईस्ट का, कश्मीर के बारे में भी. एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो, मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आप आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली.
6: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे. पूरे इंडिया का सभी लोग थे उधर, और हम लोग खाना वाना खाने के बाद इतना ध्यान में नहीं आया था, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है, हम लोग यहाँ क्यों खाना खाया, हमें तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा ऐसे बताया. फिर मैंने इतना ध्यान नहीं लिया कि ठीक है ऐसे सोच के. फिर मैं बाहर आई, बाहर देखा पूरा रेस्ट जो वहां सिर्फ नैपकिन पे नहीं, एक बड़ा उन लोगों का लोगो लगाया हुआ था जिसमें भारत का मैप में नॉर्थ ईस्ट का मैप कटा हुआ है. उनका पूरा रेस्टोरेंट में भी दोनों साइड में मैप है, बट दोनों मैप में नॉर्थ ईस्ट नहीं है. तो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि ऐसा कैसे कर सकता है, ये भारत का मैप को ऐसे कैसे कट कर सकता है. तो मैं गई और वहां पे बहुत डांस गाना भी गा रहे थे सब लोग, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा था, पूरे इंडियंस थे हम लोग, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे. तो मैंने पहले तो सबको थैंक यू बोला, बट मैंने अपना बात भी रखा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को ऐसे नहीं कट कर सकता है. तो ये मेरे को बोलना बहुत, अगर मैं नहीं बोलती तो शायद मैं निकल के आके वहां से मैं अपने आप को रिग्रेट फील करती. तो मैंने इसीलिए बोला, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया बोल के.
5: बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी. क्या आपकी बात वहां के किसी यू नो मैनेजर से हुई या फिर उस रेस्टोरेंट के ओनर से हुई, आप उनकी तरह आपने जो बात कही उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, गलती मानी, क्योंकि इंडिया का मैप जो है वो एक कलेक्टिव मैप है, आप किसी को ऐसे ही रिमूव, किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं कर सकते, इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी वहां पर?
6: हाँ, उनके ओनर ने ही आया और मेरे से बात किया कि वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया. इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया. और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको, बट मैंने बोला कि प्लीज आप लोग इसको चेंज कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगा, हम किसी भी नॉर्थ ईस्ट वाले को अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा बोला बस.
5: पार्ट नहीं था उस मैप के ऊपर में, या फिर हमारे देश के जो और भी अलग अलग हिस्से हैं उस मैप पे वो भी मिसिंग थे, कुछ आपने नजर डाला?
6: हाँ, थोड़ा सा कश्मीर का भी मैप सही नहीं है, बल्कि कश्मीर का और नॉर्थ ईस्ट का, वो दोनों थोड़ा सा कटा हुआ है मैप में.
5: दोनों कटा हुआ है मैप पे,
6: यस
5: बट फाइनली आपके कहने के बाद ओनर्स ने बोला है कि वो इसको रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे।
6: सही करेंगे बोला. यस
5: आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि एज एन इंडियन हम इन चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा जो मैप है वो कहीं से भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो।
2: Really stands out as an example, not just in the boxing ring, but also beyond it for the country. On that note, viewers, we are wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep tracking all the top stories for you right here. Thank you for watching. Stay tuned.
7: You are watching India Today.
8: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: Right field, and it will...
8: From the first pitch of the season to the stretch run.
9: And that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: It's a bitter war of words over Ram Mandir Charawa Chori that's peaked. Congress MP Pramod Tiwari takes a personal jibe with the Prime Minister over January 2024 Pran Pratishtha. Asks where was Prime Minister Modi's Sita during the rituals. BJP hits back, labels Congress anti-Ram and anti-Sanatan Dharma. This is Prime Minister Modi flagging off Nasha Mukt Yuva Viksit Bharat campaign, a fight against the use of drugs by the youth, urges youth to stay away from substance abuse, says drug addiction disturbs concentration, distances young people from their dreams and weakens the nation's future.
1: Bharpur ho drugs kuch samay ke liye high deta hai lekin आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर
0: Floods and landslides continue to wreak havoc across Kerala, leaving 8 dead and several missing. An orange alert remains in place for 12 districts. India Today reports from the ground as the situation remains grim.
2: Well, we are in Rani Pathanamthitta, one of the worst affected regions in the heavy rainfall that Kerala witnessed last night. And as you can see around me, this entire region is filled with water.
0: Chief Minister V.D. Satheesan reviews Keralam flood situation but also faces opposition fire over his alleged misplaced priorities. This after he unveiled a jewellery store in Kochi and attended a feast in Malappuram. Karnataka's release of nearly 12,000 cubic of water from the full Kabini reservoir brings temporary relief to Tamil Nadu. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar chairs an all-party meeting, calling it a historic one, while Vijay postpones his Bengaluru visit. BJP backs the Karnataka government stand. Meanwhile, on the Kaveri dispute, will the monsoon then ease tensions or is another Supreme Court showdown inevitable? Nearly 2 years after being ousted from power, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is set to address a virtual program from New Delhi on August 5. She's expected to outline her political roadmap and discuss her proposed return to Dhaka. Olympic medalist Lovlina Borgohain objects to a map of India printed on a restaurant's napkins that omitted the Northeast and calling it hurtful. She's spoken exclusively to India Today, saying the restaurant has assured her that every part of the country will be represented accurately. On that note, we are beginning the bulletin with our focus on the state of Punjab. The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly election. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked party workers and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from such sloganeering in the future. Now, Channi has struck a conciliatory note as well, saying that the Congress must function like a bouquet, carry every leader along with them and avoid alienating senior leaders. He's added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann says, "We sit on chairs, Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the very state.
3: Main Punjab Police nu badhai deni chahna, main Prashasan nu badhai deni chahna, bahut sare Deputy Commissioner te bahut sare SSP is waqt online sun rahe ne. ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਚ 1,25,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
4: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
5: ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਉਨਕੋ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਬਨੇਗੀ।
0: The Ram Mandir Charawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the very controversy. Pramod Tiwari made a very controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he was performing rituals during the Ram Mandir consecration. He's also alleged that the temple was inaugurated before completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict clearing the way for its construction already.
1: ਮੰਦਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਆਰਡਰ ਸੇ ਬਣਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਣਾਉਣਾ ਪੜਾ। ਔਰ ਜਬ ਬਣਾ तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
6: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है, तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
7: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
0: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and leader of opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Basuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
8: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. Kisi sadhu ka naam to nahi liya.
9: Ye mamla kyun darj ho gaya?
8: Hota rehta hai. Sanatan ki raksha aur is Bharat ke 100 crore के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो सदन में। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर काल कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब गारा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
10: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके।
11: पूरे देश में लोग गुस्से में, आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो, आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
12: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रखे, पैरों में रखे, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते। सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
13: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है, वो दिखाई पड़ रही थी। जो राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
9: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
0: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्देश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
14: Well, high drama unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference, leading to chaos and a scuffle between the MP's supporters and the attacker. The incident took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition skit at the parliament over the same. Now, reacting to the attack, independent MP Pappu Yadav himself alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident, and Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, the alleged attacker has been identified as Sumit. According to the preliminary information, he allegedly threw a shoe at the MP and was also seen carrying a knife. These are allegations again that have come in. It is learnt that the attack was reportedly linked to the MP's remarks and skit on the temple issue.
15: सब प्रेस के साथ ही थे ही, वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे।
16: पप्पू जी एक जन नेता है, जन नेता, जन नेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता है आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
14: Okay, now on that very story, we're getting breaking news. Happy Sharma, one of the accused in the Pappu Yadav alleged attack case, claims he and the other accused, Sumit, had gone to Pappu Yadav's residence only to question the MP over his remarks on Sanatan Dharm and the alleged insult to the sadhus. He alleges that they were assaulted instead by Yadav supporters after asking their questions and says Sumit retaliated only after the alleged attack. He's also denied the knife being used. So this is what we are learning at this present moment. The latest details that have come into the very episode of attack. Let's listen into what Happy Sharma has in fact alleged.
17: हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था। तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू।
0: Now, according to the Delhi police sources, no complaint has been received so far from Pappu Yadav, and action will be taken once a complaint is in fact officially lodged. Vikram, the head constable serving as Pappu Yadav's PSO, has handed off a knife to the police, and Sumit had arrived in a Creta car with his friend Happy Sharma, who you just heard what he had to say about the whole episode. And the Creta belongs to Sumit is what we are learning. Now, Sumit works in a hardware business. These are the latest details we have given to understand that we have received as the investigation proceeds, and as, more importantly, an official complaint is lodged in the entire episode. Only then can the police be proceeding with the very case to investigate the very case. So far, allegations have come in, and the personal security officer of Pappu Yadav has handed over that knife that was found, retrieved, to the police station so that they can begin and use that as a material of evidence in their very case to probe further. But right now, because Pappu Yadav, remember, has also made claims while speaking to the media post the incident that there was an attempt to kill him, basically. The episode unfolded somewhat like this. As you can see the camera visuals, the chaos that erupted, there was a shoe that was hurled at Pappu Yadav. And post that, the chaos began, because by then, both Sumit and Happy were in fact geraud and surrounded by all of Pappu Yadav's aides, and then they beat them up before they were handed over to the authorities. Now, Arvind Ocha joins us on the broadcast with more details. Arvind, good evening to you. Sabse pehle, ye jo do log hai, inke baare mein abhi bhi ek official complaint darj kiya jana baki hai. और उसके ऊपर ये जो नाइफ मिला है इनसे, वो तो पुलिस के पास अभी तक दे दिया है पप्पू यादव के पीएसओ ने, बट एक और सवाल ये उठता है कि ये नाइफ डिटेक्ट कैसे नहीं हुआ? जब ये यहाँ पे रेसिडेंस में घुसे हैं, तब सिक्योरिटी ने डिटेक्ट कैसे नहीं किया कि इनके पास वेपन है?
18: देखिए, ये जो पप्पू यादव के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें हंगामा हुआ, उसमें सुमित नाम के एक लड़के को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और हैप्पी शर्मा वो मौके से भाग गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेन पप्पू यादव की तरफ से नहीं मिली है। हालांकि उनके जो पीएसओ है हेड कांस्टेबल विक्रम, उन्होंने एक नाइफ वो दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया है। अगर कोई कंप्लेन देंगे तो उस हिसाब से फिर दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्शन लेगी। वहीं जो हैप्पी शर्मा इस मामले में स्पॉट से फरार हो गया था, उससे इंडिया टुडे की टीम ने बातचीत की है। उसने ये बताया है कि वो और सुमित वहां पर गए थे, दोनों कोई चाकू लेकर नहीं गए थे। उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि वो चाकू लेकर नहीं गए थे। जब वो सांसद के घर के अंदर जा रहे थे तो मेटल डिटेक्टर लगा था, उससे गुजरे। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से उनकी जांच पड़ताल की। वो अंदर गए, उन्होंने पप्पू यादव से कुछ सवाल किए, खास तौर से सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उसकी पिटाई की, जिसमें सुमित पकड़ा गया। जो हैप्पी है वो भाग गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दोनों क्रेटा कार से वहां पर पहुंचे थे। तो हैप्पी शर्मा ने इंडिया टुडे से बातचीत में पूरा सीक्वेंस बताया है कि कैसे वो वहां पर पहुंचे, और उसका दावा है कि बाहर पहले से ही कुछ साधु संत थे, उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, जिनको दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहां मीडिया के कैमरे लगे थे, और जो कुछ भी हुआ उस कैमरे के सामने हुआ। वो चाकू लेकर नहीं गए, जबकि पप्पू यादव का दावा है कि जो दो लड़के आए थे वो चाकू लेकर पहुंचे थे, उनको जान से मारने की प्लानिंग थी।
0: जी अरविंद, अगर हम ये पूरा एपिसोड जो कैमरा पे आया है वो भी देखे, तो पहले जिनको घेरा गया था वो थे शायद सुमित, और उनको पहले मारा गया था, और वो इनफैक्ट गिर भी गए थे जमीन पे। उसके बाद हैप्पी के ऊपर जो पप्पू यादव के एड्स थे उनका ध्यान गया, और फिर दोनों को हिरासत में लिया गया।
18: बिल्कुल, देखिए अगर आप विजुअल में देखें तो एक दो जगह कुछ जूते चप्पल भी उछले हुए दिखाई दे रहे हैं पप्पू यादव की तरफ, जिसको पुलिस वेरीफाई कर रही है। वहीं सबसे पहले जो पप्पू यादव के वहां पर समर्थक थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने सुमित को पकड़ा, उसकी पिटाई की। सुमित को समर्थकों ने अपने कब्जे में ले लिया, बाद में पुलिस के हैंडओवर किया। हैप्पी शर्मा को भी पकड़ा था, उसकी पिटाई की, लेकिन वो फिर किसी तरह से उनके चंगुल से निकला और फिर वहां से वो फरार हो गया। फरार होने के बाद इंडिया टुडे से उसने बातचीत की है और उसने हमारे कैमरे पर यह भी दावा किया है कि वो जल्द ही दिल्ली पुलिस के सामने पेश होगा और अपनी बात रखेगा। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि दो लोग आए थे, सुमित और हैप्पी, क्रेटा कार से आए थे। पप्पू यादव की तरफ से उनके पीएसओ ने एक चाकू भी हैंडओवर किया है, जिसकी वो इंक्वायरी कर रहे हैं।
0: जी अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। व्यूअर्स, these are the latest details, the entire sequence that my colleague just described to you, what exactly happened, because one among the two of the accused have even spoken to India Today after they have been taken into detention, and they have explained the side of the story from their side. And yes, investigation will continue once an official complaint is lodged from Pappu Yadav's side. Right now, the police are waiting on that very complaint. But we have more news coming in. Let's quickly take a look. Now, incident involving the viral video of a minor girl during the protest at Jantar Mantar. The Delhi police has not registered an FIR is what we are learning, and nor will any FIR be registered in this matter subsequently. This is what we are in fact bringing to you. This is with regards to that girl, Ruchika Singh, who in fact had even issued an apology video later on after that video of hers abusing the Prime Minister had gone viral on the internet. अरविंद ओझा कंटिन्यूज टू बी विद अस। अरविंद, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले ही हमने प्रधानमंत्री से देख लिया था एक इंस्टाग्राम वीडियो में, कैसे उन्होंने बोला था कि अब हर किसी को इस एपिसोड से और जितने भी बच्चे ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ऐसे अपशब्द यूज करने में, इनको माफ करके हम इसके आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही हम अभी देखते हैं कि रुचिका को के खिलाफ भी कोई एफआईआर और दर्ज नहीं किया जाएगा, यही जानकारी सुनने में आ रहा है। जो जीरो एफआईआर फाइल हुआ था उसके बारे में, उसका भी तब क्या स्टेटस है, उसके बारे में बताइए प्लीज।
18: देखिए, जीरो एफआईआर नोएडा पुलिस ने में रजिस्टर्ड की थी और जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने जो एज बताई थी लड़की की वो भी गलत निकली। बाद में खुद लड़की और लड़की की मदर सामने आई, उन्होंने बताया कि लड़की माइनर है, 15 साल सिर्फ उसकी उम्र है। हमें दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने बताया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने न कोई एफआईआर दर्ज की है, न आगे दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज करेगी। और जब एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा, इस मामले में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के ये बताया था कि बच्चे हैं, इनसे गलती हो जाती है, इनको मौका देना चाहिए सुधार करने का। एफआईआर करना और इनको ट्रोल करना ये कोई समाधान नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस इसी वजह से इस मामले में कोई केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और कोई एफआईआर इस मामले में ना अभी तक दर्ज किया है और ना आगे दर्ज करेगी।
0: जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well, viewers, that's what we are learning right now, that young girl who in fact was earlier facing that zero FIR will no longer be facing an FIR is what we are learning. On that note, we are wrapping up the bulletin right here. Do stay tuned to India Today as we keep tracking all the top stories for you.
19: You are watching India Today.

0: substance abuse, says drug addiction disturbs concentration, distances young people from their dreams and weakens the nation's future.
1: Atma drugs kuch samay ke liye high deta hai, lekin aapke career aur family life ko low kar deta hai.
0: Floods and landslides continue to wreak havoc across Kerala, leaving 8 dead and several missing. An orange alert remains in place for 12 districts. India Today reports from the ground as the situation remains grim.
2: Well, we are in Rani Pathanamthitta, one of the worst affected regions in the heavy rainfall that Kerala witnessed last night. And as you can see around me, this entire region is filled with water.
0: Chief Minister V.D. Satheesan reviews Keralam flood situation but also faces opposition fire over his alleged misplaced priorities. This after he unveiled a jewellery store in Kochi and attended a feast in Malappuram. Karnataka's release of nearly 12,000 cusecs of water from the full Kabini reservoir brings temporary relief to Tamil Nadu. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar chairs an all-party meeting, calling it a historic one that has been won by them. While Vijay postpones his Bengaluru visit, BJP backs the Karnataka government's stand on the Kaveri dispute. Will the monsoon then ease tensions, or is another Supreme Court showdown inevitable? Nearly 2 years after being ousted from power, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is set to address a virtual program from New Delhi on August 5th. She is expected to outline her political roadmap and discuss her proposed return to Dhaka. Olympic medalist Lovlina Borgohain objects to a map of India printed on a restaurant's napkins that omitted the Northeast. Calling it hurtful, she has spoken exclusively to India Today, saying the restaurant has assured her that every part of the country will be represented accurately.
3: मैप को ऐसे कैसे करते हैं
4: मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा ये इंडिया मैप ने हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है
0: The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked the party workers and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from any kind of sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating their senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs, but the Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the state.
5: Main Punjab police nu badhai deni chahna, main prashasan nu badhai deni chahna, bahut sare deputy commissioner te bahut sare SSP is waqt online sun rahe ne, badi saryan di prapti hai. 70,000 banda giraftar kita 500 dinan ch, 70,000 banda nasha tashkar jehde sige. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਚ 1,25,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ
3: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
6: ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਬਾਹਰ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਉਨਕੋ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਬਨੇਗੀ।
0: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now, the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharm.
1: Mandir BJP ne nahi banwaya. Ye mandir Supreme Court ke order se bana. Majboori ho gayi. Banana pada. और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
7: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है, तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
8: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
0: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Basuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
9: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. Kisi sadhu ka naam to nahi liya.
10: Ye mamla kyun darj ho gaya?
9: Hota rehta hai. Sanatan ki raksha aur is Bharat ke 100 crore के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो सदन में। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर काल कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब करा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
11: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए, तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
12: पूरे देश में लोग गुस्से में, आक्रोश में है कि भगवान राम के अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो, आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
13: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
14: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
10: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
15: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्देश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
0: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other, Happy Sharma, spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
16: सब प्रेस के साथ ही थे, ही वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जब लोग नहीं होते आज ना, तो खत्म थे।
17: पप्पू जी एक जननेता है, जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
18: हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था, तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।
0: On that note, viewers, we are wrapping up the bulletin right here this evening's hour. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates through the day. Thank you for watching.
19: You are watching India Today.
20: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
21: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
20: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
21: They score!
20: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Now the police have made it very clear. 101 murder accused, there are some rape accused, there are dacoity and criminal accused, molesters, rapists, they were all there in the crowd. Now, how will the police distinguish who are these peacefully protesting students in this? Who are those hardened criminals? Who are stone pelters? Tell me, how will you distinguish?
4: The government controlled everything. They didn't want too much private industry.
22: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
4: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

शिक्षा में भेदभाव न हो, अवसरों में भेदभाव न हो, आज ये देश का विजन बन गया है। आज बेटियां भी सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। एनडीए में बेटियां राष्ट्र के लिए योगदान दे रही है। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई मातृभाषा में करने की सुविधा हो गई है। इससे भाषा के आधार पर अवसरों में होने वाले भेदभाव पर लगाम लग रही है। किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले। मुझे खुशी है कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है, करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं, 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई है, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एमपी स्थापित किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है।

0: सीजीपी जो है कांग्रेस जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है, आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है, और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है, इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है।
1: पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जनसेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी।
2: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
3: So, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सर्स ने अपना जो पंच था ना वो जम के लगाया, क्योंकि जितने मेडल्स इस बार हमें बॉक्सर्स ने दिलाए हैं शायद वो सबसे बड़ी वजह है कि मेडल टैली में हम अब और ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लवलीना इस वक्त मेरे साथ हैं, इस बार सिल्वर मेडल के साथ वापस आ रही हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है जब एशियन गेम्स में जाएंगी तो कलर मेडल जो मेडल का वो जरूर चेंज होगा। लवलीना, इस बार ग्लासगो में एक्सपीरियंस कैसा था, और क्या बॉक्सिंग की टीम ने घर में ये सोच के ही गई थी कि यार हम ना डोमिनेट कर देंगे जितने भी सामने वाले जो बॉक्सर्स होंगे उनको?
4: बहुत अच्छा फीलिंग है क्योंकि हमारे बॉक्सिंग ने जो बॉक्सर्स ने जो किया है, हमारे टीम ने जैसा किया है ना, पूरा हिस्ट्री में शायद ऐसा हुआ है कि हमारे बॉक्सर्स ने इतना ज्यादा मेडल लेने के लिए हुआ है इस बार। उसके लिए मैं बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे
3: हैं। ऐसा पहली बार हुआ आपके साथ आई थिंक कि बिना बाउट खेले आपका मेडल पक्का हो गया था, तो वो टाइम चूंकि हर एथलीट के लिए होता है ना कि मैं तैयार कर रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर रही हूँ, मैं जाऊंगी, मैं फाइट करूंगी, बट वो एक बाय मिलना, उसके बाद बॉक्सिंग की पूरी टीम ने जो कमाल किया, ये चीज आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मेंटली आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, सो वो चीज का इम्पैक्ट कैसा रहा?
4: ये मेरे लिए भी बहुत एक बड़ी बात था क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पहले बार जाके ही सेमीफाइनल मिलना, और कॉमनवेल्थ गेम्स में, बल्कि मेरा 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल भी नहीं था, और इस बार आके ही डायरेक्ट सेमीफाइनल। और ये मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि मुझे ऐसा चांस मिला, और उससे एक तो है कि हमारे पूरा टीम का मोटिवेशन और भी बढ़ गया कि हमें सबको अच्छा करना है और भी मेडल लेना है, और उसके बाद जो हमारे इंडिया टीम ने किया है वो तो मतलब सबको पता है अभी, और मेरा लास्ट में थोड़ा सा उससे रह गया, मैं सिल्वर में रुकना पड़ा मुझे, ये गोल्ड होता तो मैं और भी ज्यादा खुश हो पाती, बट मैं कोशिश करूंगी कि एशियन गेम्स में मैं और अच्छा करूं और इस बार मैं अपने देश को गोल्ड मेडल दूं।
3: बस फाइनल बाउट के बारे में बताइए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर थी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को सेव भी कर रही थी, आपकी तरफ से हमें अटैक देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन रिंग में क्या कुछ चल रहा था वो आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं।
4: मेरा लास्ट राउंड में थोड़ा सा उससे रह गया, मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं अपने अपनी तरफ लाऊं, बल्कि बहुत क्लोज गया है मैच, सबने देखा होगा, और उसको कट भी लग गई थी, और उसके बाद भी वो खेल रही थी और मैं भी पूरा कोशिश कर रहा था। तो फाइट बहुत ज्यादा टफ था, मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी, मैं पूरा कोशिश किया कि मैं जीतूं और मैं शायद मैं जीत भी सकती थी। बहुत ज्यादा क्लोज था फाइट, बट ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें ओलंपिक तक जाना है, तो
3: ऑफ
4: नेक्स्ट
3: कोर्स,
4: टाइम
3: और
4: पक्का
3: ओलंपिक में भी मेडल का कलर चेंज करना है।
4: जरूर।
3: अच्छा, आखिरी के कुछ सवाल लवलीना। इस बार क्या हुआ ना कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे, जिसका सीधा और साफ असर हमारी मेडल टेली पर पड़ा है। पिछली बार
4: जी
3: आप देखिए, हमारे मेडल्स बहुत ज्यादा थे, लगभग लगभग 69-70 मेडल्स थे, जिसे उसमें अच्छे खासे गोल्ड थे। इस बार वो गोल्ड्स का भी नंबर थोड़ा सा कम है, सिल्वर का भी कम है और ब्रॉन्ज का भी कम है। एज एन
4: जी
3: एथलीट, आपको ये डिसीजन कैसा लगता है ऑर्गेनाइजर्स का कि भाई वो जो डिसिप्लिन जिसमें इंडिया डोमिनेट करता था, वो डिसिप्लिन वहां पर नहीं थे और साफ असर पड़ा मेडल टैली पर?
4: ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक तो मेडल टेली पे भी जो इफेक्ट पड़ा है, और ऊपर से हर एक एथलीट के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ही कंपटीशन मिलता है। गेम्स तो हम लोगों के पास 3 ही गेम्स है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स। इसमें भी अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए नहीं मिला तो एथलीट के लिए भी बहुत बड़ी लॉस है, और हमारे देश के लिए तो लॉस है ही, क्योंकि इतने सारा मेडल हमें नहीं मिल पाया। ये तो मतलब नेक्स्ट टाइम जैसे नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को हर हर इवेंट को खेलने के लिए मिलना चाहिए। ये एक बहुत इफेक्ट हमारे मेडल टेली पे भी पड़ा है। हाँ
3: बिल्कुल। एक और एक सवाल, हालांकि वो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस बात का जिक्र किया, आप एक रेस्टोरेंट में गई थी, उस रेस्टोरेंट की नैपकिन के ऊपर में मैप नहीं था नॉर्थ ईस्ट का, कश्मीर के बारे में भी। एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो, मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त? पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली?
4: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे। पूरे इंडिया का सभी लोग थे उधर, और हम लोग खाना वाना खाने के बाद इतना ध्यान में नहीं आया था, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है, हम लोग यहाँ क्यों खाना खाया, हमें तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा ऐसे बताया। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं लिया कि ठीक है ऐसे सोच के। फिर मैं बाहर आई, बाहर देखा पूरा रेस्ट जो वहाँ सिर्फ नैपकिन पे नहीं, एक बड़ा उन लोगों का लोगो लगाया हुआ है जिसमें भारत का मैप में नॉर्थ ईस्ट का मैप कटा हुआ है, और उनका पूरा रेस्टोरेंट में भी दोनों साइड में मैप है, बट दोनों मैप में नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि ऐसा कैसे कर सकता है ये, भारत का मैप को ऐसे कैसे कट कर सकता है। तो मैं गई और वहां पे बहुत डांस गाना भी गा रहे थे सब लोग, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा था, पूरे इंडियंस थे, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने पहले तो सबको थैंक यू बोला, बट मैंने अपना बात भी रखा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था कि हमारे नोटिस को ऐसे नहीं कट कर सकता है। तो ये मेरे को बोलना बहुत, अगर मैं नहीं बोलती तो शायद मैं निकल के आके वहां से मैं अपने आप को रिग्रेट फील करती, तो मैंने इसीलिए बोला, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया बोल के।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। क्या आपकी बात वहां के किसी मैनेजर से हुई या फिर उस रेस्टोरेंट के ओनर से हुई? आप उनकी तरह आपने जो बात कही उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, गलती मानी? क्योंकि इंडिया का मैप जो है वो एक कलेक्टिव मैप है, आप किसी को ऐसे ही रिमूव, किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं कर सकते। इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी वहां पर?
4: हाँ, उनके ओनर ने ही आया और मेरे से बात किया, कि वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको, बट मैंने बोला कि प्लीज आप लोग इसको चेंज कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगा, हम किसी भी नोटिस वाले को अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा बोला बस।
3: नहीं, बिल्कुल
4: वो
3: ठीक
4: लोग
3: है।
4: सॉरी भी बोला वैसे वो लोग।
3: ओके
4: यस
3: ओके, सॉरी बोला, वो बड़ी चीज है,
4: यस
3: क्योंकि गलती का
4: जी
3: एहसास होना बड़ी चीज है। और जैसा कि आपने कहा
4: जी
3: कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मैप चेंज करेंगे, बट क्या
4: जी
3: सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का मैप का पार्ट नहीं था उस मैप के ऊपर में, या फिर हमारे देश के जो और भी अलग अलग हिस्से हैं उस मैप पे, वो भी मिसिंग थे कुछ, आपने नजर डाला?
4: हाँ, थोड़ा सा कश्मीर का भी मैप सही नहीं है, बल्कि कश्मीर का और नॉर्थ ईस्ट का, वो दोनों थोड़ा सा कटा हुआ है मैप में।
3: दोनों कटा हुआ है मैप पे,
4: यस,
3: बट फाइनली आपके कहने के बाद ओनर्स ने बोला है कि वो इसको रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे।
4: सही करेंगे बोला, यस।
3: आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि एज एन इंडियन हम इन चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा जो मैप है वो कहीं से भी यू नो उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो। बट कमिंग बैक टू द स्पोर्ट्स, एशियन गेम्स के लिए लवलीना अब यहाँ से तैयारी करेंगी और ये जो अभी यहाँ पर सिल्वर मेडल है उसको कन्वर्ट

0: ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
1: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
2: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now, the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharma.
3: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
4: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है। तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
5: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
2: On the other hand, opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Basuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
6: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. Kisi sadhu ka naam to nahi liya.
7: Ye mamla kyun darj ho gaya?
6: Hota rehta hai. Sanatan ki raksha aur is Bharat ke 100 crore ke aastha ke liye hum 1,00,000 baar kurban ho. जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए, अब गारा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
8: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए, तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
9: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही है, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी, तो साधुओं का मैं कौन साधु का कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
10: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के पैरों में रख के जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
11: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
7: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
12: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्निदेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
2: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other Happy Sharma spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
13: सब प्रेस के साथ ही थे, ही वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जब लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे।
14: पप्पू जी एक जन नेता है, जन नेता, जन नेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
15: हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था, तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: are watching India Today.
1: The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked the party workers, and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from any kind of sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating their senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs, but the Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the state.
2: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ,
3: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
4: जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
1: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now, the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharm.
5: Mandir BJP ne nahi banwaya. Ye mandir Supreme Court ke order se bana. Majboori ho gayi. Banana pada. और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
6: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है, तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
7: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
1: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
8: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
9: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
8: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े पहनते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब गरम मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
10: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए, तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
9: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही है, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
11: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के पैरों में रख के जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
12: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
13: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास न करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
14: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
1: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other Happy Sharma spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit, and the police so far, from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
15: सब प्रेस के साथ ही थे ही वार्ता हो ही रही थी उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो कोई कह रहे हैं मार दो कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं तो आवाज ही चली गई जब लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे
16: पप्पू जी एक जन नेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं अरे वो हमलावर था जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते
17: हम भीतर गए हमारी चेकिंग होके गई हम पे कोई कुछ नहीं था तो हम भीतर गए तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे इतना कहा पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं पर आप हमारे साधु संतों पर जो देश के साधु संत हैं उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
1: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है, तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
2: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
3: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
4: पूरी मर्यादा में किसी व्यक्ति को कोई गाली तो नहीं दिया, किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
5: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
4: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की? कहां आवाज उठाए? अब कारा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, कदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
5: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है। जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है। और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
6: पूरे देश में लोग गुस्से में, आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही है। इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो, आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है। साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए। आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो। तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
7: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है। और पप्पू यादव तो मुखोटा है, अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते। सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
8: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
9: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
3: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other Happy Sharma spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting their very complaint to start the very probe.
11: सब प्रेस के साथ ही थे ही वार्ता हो ही रही थी उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो कोई कह रहे हैं मार दो कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं तो आवाज ही चली गई जब लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे
12: पप्पू जी एक जननेता है जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं अरे वो हमलावर था जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते
13: हम भीतर गए हमारी चेकिंग होके गई हम पे कोई कुछ नहीं था तो हम भीतर गए तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे इतना कहा पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं पर आप हमारे साधु संतों पर जो देश के साधु संत हैं उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया

0: are watching India Today.
1: The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked the party workers, and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from any kind of sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating their senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs, but the Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the state.
2: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ,
3: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
4: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपनी आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
1: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharm.
5: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
6: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है, तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
7: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
1: On the other hand, opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Basuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma, and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
8: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
9: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
8: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब गरम मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, कदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
10: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए, तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
9: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी, तो साधुओं का कौन साधु का पा कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
11: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के पैरों में रख के जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
12: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
13: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
14: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्देश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
1: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other, Happy Sharma, spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit, and the police so far, from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
15: सब प्रेस के साथ ही थे ही वार्ता हो ही रही थी उतने में मारने की साहब तू तो चल ही रहा है कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो कोई कह रहे हैं मार दो कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं तो आवाज ही चली गई जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे
16: पप्पू जी एक जननेता है जननेता का मतलब 24 घंटे 24 24/7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं अरे वो हमलावर था जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते
17: हम भीतर गए हमारी चेकिंग होके गई हम पे कोई कुछ नहीं था तो हम भीतर गए तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे इतना कहा पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं पर आप हमारे साधु संतों पर जो देश के साधु संत हैं उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी देगी। दूसरा,

0: तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
1: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है। तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
2: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
3: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilled over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
4: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
5: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
4: होता रहता है। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब करा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
6: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव, घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए, तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
5: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही है, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु के, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
7: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
8: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
9: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास न करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
3: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other, Happy Sharma, spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
11: सब प्रेस के साथ ही थे ही वार्ता हो ही रही थी उतने में मारने की साहब तू तो चल ही रहा है कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो कोई कह रहे हैं मार दो कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं तो आवाज ही चली गई जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे
12: पप्पू जी एक जननेता है जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं अरे वो हमलावर था जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते
13: हम भीतर गए हमारी चेकिंग होके गई हम पे कोई कुछ नहीं था तो हम भीतर गए तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे इतना कहा पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं पर आप हमारे साधु संतों पर जो देश के साधु संते हैं उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया

0: are watching India Today.
1: The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked the party workers, and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from any kind of sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating their senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs, but the Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the state.
2: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ,
3: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
4: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
1: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharma.
5: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
6: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है, तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
7: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
1: On the other hand, opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong, that's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
8: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
9: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
8: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में को हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े पहनते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब गरम मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
10: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
9: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
11: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के पैरों में रखे जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि FIR दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
12: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
13: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास न करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
14: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
1: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other, Happy Sharma, spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit, and the police so far, from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
15: सब प्रेस के साथी थे ही वार्ता हो ही रही थी उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो कोई कह रहे हैं मार दो कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं तो आवाज ही चली गई जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे
16: पप्पू जी एक जननेता है जननेता मतलब 24 घंटे 24 इंटू 2 इंटू 7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं अरे वो हमलावर था जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते
17: हम भीतर गए हमारी चेकिंग होके गई हम पे कोई कुछ नहीं था तो हम भीतर गए तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे इतना कहा पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं पर आप हमारे साधु संतों पर जो देश के साधु संत हैं उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: वंचित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है। तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
1: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
2: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Basuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
3: पूरी मर्यादा में किसी व्यक्ति को कोई गाली तो नहीं दिया, किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
4: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
3: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए। अब गरम मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, कदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
5: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है। जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
6: पूरे देश में लोग गुस्से में, आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो, आलोचना करी, तो साधुओं का मैं कौन साधु का, कोई साधु, सारे साधु तो बोल रहे हैं, कि वहां से भयानक चोरी हुई है। साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए। आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो। तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
4: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि FIR दर्ज हुई है। और पप्पू यादव तो मुखोटा है, अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते। सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
7: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
8: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
9: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अग्देश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
2: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other, Happy Sharma, spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
10: सब प्रेस के साथ ही थे ही, वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जब लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे।
11: पप्पू जी एक जननेता है, जननेता, जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
12: हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था, तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked the party workers, and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from any kind of sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating their senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs, but the Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the state.
3: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ,
4: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
5: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
2: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now, the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharma.
6: ਮੰਦਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
7: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है, तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
8: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
2: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong, that's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just in fact happened a little while back.
9: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya, किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
10: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
9: होता रहता। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को LOP को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े पहनते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए अब गाड़ा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
10: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है। जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके।
11: पूरे देश में लोग गुस्से में, आक्रोश में है कि भगवान राम के अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो, आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
12: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते। सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
13: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
14: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
15: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
2: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other Happy Sharma spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
16: सब प्रेस के साथ ही थे ही वार्ता हो ही रही थी उतने में मारने की साहब तू तो चल ही रहा है कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो कोई कह रहे हैं मार दो कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं तो आवाज ही चली गई जब लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे
17: पप्पू जी एक जननेता है जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं अरे वो हमलावर था जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते
18: हम भीतर गए हमारी चेकिंग होके गई हम पे कोई कुछ नहीं था तो हम भीतर गए तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे इतना कहा पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं पर आप हमारे साधु संतों पर जो देश के साधु संत हैं उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया

0: क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
2: थोड़ा सा तो निराशा है कि मैं गोल नहीं जीत पाई। मैंने कोशिश पूरा किया था और मेरा मैच भी ऐसा ही क्या बहुत क्लोज गया, और उससे ज़्यादा खुशी है मेरे टीम के लिए। टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, इतने सारे गोल्ड और पूरी टीम का जो एफर्ट, कोचेस और पूरा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट सब ने इतना सपोर्ट किया है, तो उसके लिए ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हम इंडिया टीम, जो पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक मेडल लेने के लिए हम इतना होते थे बॉक्सिंग में, लेकिन अभी पूरा टीम 10 का 10 मेडल है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
3: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है और थोड़ी चुप रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूंगा।

0: बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
1: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
2: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilled over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
3: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya, kisi sadhu ka naam to nahi liya.
4: Ye mamla kyun darj ho gaya?
3: Hota rehta. Sanatan ki raksha aur is Bharat ke 100 crore ke aastha ke liye hum 1,00,000 baar kurban ho. जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो सदन में। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए अब करा मारो पप्पू यादव को, इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
5: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
6: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम कि अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही है, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी तो साधुओं का, मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
4: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के पैरों में रख के जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है। और पप्पू यादव तो मुखोटा है, अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते। सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
5: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के। तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
7: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
8: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
2: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other, Happy Sharma, spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
9: सब प्रेस के साथ ही थे ही, वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे।
10: पप्पू जी एक जननेता है, जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
11: हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था। तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: are watching India Today.
1: The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked the party workers, and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from any kind of sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating their senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs, but the Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the state.
2: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ,
3: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
4: जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
1: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now, the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharm.
5: Mandir BJP ne nahi banwaya. Ye mandir Supreme Court ke order se bana. Majboori ho gayi. Banana pada. और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
6: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है। तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
7: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
1: On the other hand, the opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi and Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav, as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Bansuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong, that's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just in fact happened a little while back.
8: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya, किसी साधु का नाम तो नहीं लिया।
9: ये मामला क्यों दर्ज हो गया?
8: होता रहता है। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को LOP को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े पहनते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए? अब गरम मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
10: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में RSS और BJP के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए, तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
9: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी, तो साधुओं का मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह रहे, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
11: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के पैरों में रख के जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते। सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
12: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
13: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
14: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
1: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other, Happy Sharma, spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit, and the police so far, from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
15: सब प्रेस के साथ ही थे ही वार्ता हो ही रही थी उतने में मारने की साहब तू तो चल ही रहा है कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो कोई कह रहे हैं मार दो कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं तो आवाज ही चली गई जब लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे
16: पप्पू जी एक जननेता है जननेता का मतलब 24 घंटे 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं अरे वो हमलावर था जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते
17: हम भीतर गए हमारी चेकिंग होके गई हम पे कोई कुछ नहीं था तो हम भीतर गए तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे इतना कहा पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं पर आप हमारे साधु संतों पर जो देश के साधु संत हैं उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
1: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
2: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
3: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now, the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharm.
4: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
5: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है। तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
6: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं।
3: On the other hand, opposition MPs had staged a satirical skit right outside the parliament that's now become the trigger point for a much bigger row that's spilt over. After independent MP Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest outside the parliament and Leader of Opposition Rahul Gandhi made a symbolic donation, trouble is mounting for the opposition leaders. Hundreds of VHP and Bajrang Dal workers held protests in several cities condemning Rahul Gandhi

0: Pappu Yadav for the skit, raising slogans and even burning effigies. Varanasi police, in fact, have registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav as well as Avadhesh Prasad. A BJP delegation, meanwhile, led by MP Basuri Swaraj, has submitted a police complaint alleging that their protest hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharma. A complaint has also been filed at the Parliament Street police station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play outside the Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharma and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram. Despite the outrage, Pappu Yadav remains defiant, or at least so before he was attacked upon just a little while back during a press conference. Reacting to that FIR and the other complaints against him, Pappu Yadav had said that he didn't care about the BJP's criticism at the end of the day and that he will do it again no matter how many cases are filed. When questioned whether highlighting the donation theft at the temple, protesting against the insult to Sanatan Dharma and protecting the faith of crores of Hindus is wrong. That's the question that's been raised by him after there was an attempt made to attack him during that press conference that has just, in fact, happened a little while back.
1: Puri maryada mein kisi vyakti ko koi gaali to nahi diya. Kisi sadhu ka naam to nahi liya.
2: Ye mamla kyun dard ho gaya?
1: Hota rehta. Sanatan ki raksha aur is Bharat ke 100 crore ke aastha ke liye hum 1 lakh baar kurban ho. जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो सदन में हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की, कहां आवाज उठाए, अब करा मारो, पप्पू यादव को इनाम दो, खत्म कर दो, मार दो, गदा जला दो, हमको मारो, मेरे बच्चों को मत देखना।
3: पूरे देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है, जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव घर गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए, तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुके हैं।
4: पूरे देश में लोग गुस्से में आक्रोश में है कि भगवान राम की अगर दान पर से आपने पैसा चुरा लिया तो आप क्या करोगे, तो उससे पूरी छवि इनकी ध्वस्त हो रही, इसलिए घबराए हुए, इसलिए इन्होंने लगाया हुआ कि उसको ये करो आलोचना करी, तो साधुओं का मैं कौन साधु का अपमान, कोई साधु कह, सारे साधु तो बोल रहे हैं कि वहां से भयानक चोरी हुई है, साधु कह रहे हैं कि उससे से उन लोगों को निकालो जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो ट्रस्ट से निकाले जाए, आप क्यों नहीं निकाल रहे, उन्हीं को बार बार लगा दे रहे हो, तिरुपति से तो आज तक ऐसी शिकायत नहीं है, तुम्हें एक मंदिर तुमने बनाया उसी का पैसा निकालने लगे।
5: संत के कपड़े पहन करके राम जी को अवधेश के चरणों में रख के पैरों में रखे, जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुर्गों की बात करते, सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया।
6: ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। चोर राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के, तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है।
2: कल जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास ना करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें।
7: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है।
0: High drama also unfolded at independent MP Pappu Yadav's Delhi residence after a man allegedly hurled a shoe at him during a press conference he was holding, leading to a complete episode of chaos and scuffle between the MP's supporters and aides and the attacker on the other side. The incident, in fact, took place amid a controversy over Yadav's remarks on the alleged disappearance of Ram temple offerings and opposition's skit at Parliament over the same. Now, reacting to the attack, Independent MP Pappu Yadav alleged that there was an attempt to kill him. He claimed that the people present at the spot rescued him during the very incident. And Pappu Yadav once again raised questions over the alleged disappearance of temple gold and silver and has sought security, urging the Delhi police to conduct a detailed investigation into the matter. Meanwhile, two accused, in fact, have been identified. While one accused, Sumit, is in police custody, other Happy Sharma spoke exclusively to India Today, claiming that both of them were unarmed, had gone to the MP's residence only to discuss the Chanda Chori skit. And the police, so far from what we are learning, have not initiated an investigation. Sources say no official complaint has been filed by the MP so far, so they are awaiting that very complaint to start the very probe.
8: सब प्रेस के साथी थे ही, वार्ता हो ही रही थी, उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जो लोग नहीं होते आज ना, तो खत्म थे।
9: पप्पू जी एक जननेता है, जननेता का मतलब 24x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते।
10: हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था, तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संते हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डूल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।

0: FCRA का बिल जो है पिछले बजट सत्र के समय इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद कुछ सुझाव आए थे सदस्यों से, तो उसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे जब बीएससी में इसकी चर्चा होगी।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिल है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जजेस का संख्या बढ़ाया गया है, उसका भी हम बिल पारित करना है।
2: और सर एफसीआरए अमेंडमेंट को
1: कई कई इम्पोर्टेंट बिल्स है,
2: तो उम्मीद कर सकते हैं कि
1: बिल्स के बारे में मैं आपको समय समय में सूची दे दूंगा या सूचना दे दूंगा।

0: are watching India Today.
1: The faction war within the Punjab Congress is in full view ahead of the 2027 assembly elections. Supporters of former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi raised loud Channi Zindabad slogans, triggering an awkward moment for the state leadership. Senior leader Razia Sultan rebuked the party workers, and Punjab Congress Chief Amarinder Singh Raja Waring stepped in with damage control, urging supporters to refrain from any kind of sloganeering. Channi has struck a conciliatory note as well, saying Congress must function like a bouquet, carry every leader along and avoid alienating their senior leaders. He added that the final decision rests with the party high command and that he would discuss the issue with Waring himself. But Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has seized the opportunity to target the Congress, saying infighting continues unabated. Mocking the party, Mann said, "We sit on chairs, but the Congress throws them." Mann has also accused the Congress of neglecting Punjab and nurturing corruption and drug culture in the state.
2: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 70,000 ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 500 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 70,000 ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 125,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜੂਬ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ,
3: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।
4: जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। हमने किसी का ध्यान नहीं, अपने आप पे नजर रखनी है और अपने वर्कर को मजबूत करना है। आने वाला वक्त हमारा है और सरकार भी हमारी बनेगी।
1: The Ram Mandir Charhawa Chori has triggered a fresh political face-off between the Congress and the BJP. Senior Congress MP Pramod Tiwari has now trained his guns on Prime Minister Narendra Modi over the controversy, with Pramod Tiwari now having made a controversial personal remark questioning who Prime Minister Modi's Sita was when he performed rituals during the Ram Mandir consecration. He also alleged that the temple was inaugurated before the completion for political gains, despite the Supreme Court's verdict that had already cleared the way for its construction. Now the BJP has also hit back and has labelled Congress as anti-Ram and anti-Sanatan Dharm.
5: मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था, मंदिर नहीं। उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खींचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
6: प्रमोद तिवारी राहुल गांधी के इशारे पर प्रभु राम को लांछित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी संसद के परिसर में जिस तरीके से भगवा पर हमला हुआ है, ये सबने देखा है। तो प्रमोद तिवारी और कांग्रेस ये जान ले कि भगवा पर हमला, प्रभु राम पर हमला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका सबक सिखाएगी।
7: देखिए, पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं।